FM बैंड 103.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी

0: साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

शिव जी की इस आरती के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए। ग्रीष्मकालीन

0: लौकी की उन्नत खेती, इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय का।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। आज हम बात करबो ग्रीष्मकालीन लौकी की उन्नत खेती। लौकी के फायदा सब जन जाना धन संगवारी हो, चाहे लौकी के साग हो, चाहे लौकी के रस हो, और लौकी के मांग बारह महीना बाजार में रहते और बढ़िया कीमत भला मिलते। लौकी के उन्नत किस्म के बात करी, NDBG 104 पूसा नवीन, PSPL, PSPR और वरद। भूया के जहां तक हम बात करी, लौकी के सफलतापूर्वक खेती करे बर बलुई दोमट माटी, मटासी माटी में बढ़िया एकर खेती करे जा सकते। हल्का भुरभुरा माटी रहे, जेमा जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में रहे, पानी के निथार के बढ़िया व्यवस्था हो, और संगे संग में लौकी के खेती पर भूया के जौन पीएच मान है 5.5 ले 5.6 बढ़िया माने गए है। बुआई के उचित समय के हम बात करी संगवारी हो, मई जून में बढ़िया बुआई करे जा सकत है। बीजा के बात करी तो 3.5 ले 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब ले बीजा के जरूरत पड़ते। बीजा बोए के पहली बीजोपचार करना बहुत आवश्यक है। तो बीजोपचार बर 2.5 ग्राम बाविस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीजा के हिसाब ले बढ़िया ढंग से मिला देना चाहिए। दोनों हाथ ले वाला कई बार ऊपर नीचे मिलाना चाहिए ताकि एक उठो बीजा छूट मत जाए, और बढ़िया मिला के वाला बगरा देना चाहिए। बढ़िया भूया ला 4-5 फीट गहरा जुताई करके ओमा 2-3 फीट बढ़िया पाटा चला के वाला बराबर करके भुरभुरा बना लेना है। ओखर बाद में आखिरी जुताई में हो जावे तो सबले बढ़िया सड़े हुए गोबर के खातू ओमा मिला के खेत ला बढ़िया तैयारी करना चाहिए। तेखर बाद बढ़िया मादा बना लेना चाहिए। मादा बनाना है तो पंक्ति ले पंक्ति के दूरी 2.5 ले 3.5 मीटर और पौधा ले पौधा की दूरी 60 ले 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए। खातू की बात करी संगवारी हो तो नत्रजन 80 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम के मात्रा इमा लगते। सिंचाई के बात करी तो यह भूया और मौसम के ऊपर निर्भर है, तबो ले कम से कम 8-10 सिंचाई की आवश्यकता हिला पड़ते। नत्रजन के आधा मात्रा जो उन्हें स्फुर के पूरा मात्रा बुआई के समय दे देना है, शेष नत्रजन के आधा मात्रा रोपाई के 30-40 दिन के पश्चात देना बढ़िया रीत है। लौकी की खेती में संगवारी हो ढेखरा बहुत आवश्यक है। ढेखरा की व्यवस्था हो जाए, मंडप की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रीत है। काबर के यमा यमन बढ़िया लम के फल थे और साफ सुथरा तक हो रही थे। ये प्रकार ले अगर लौकी की खेती करे जाए तो प्रति हेक्टर 250 ले 300 कुंटल लौकी प्रति हेक्टर में उत्पादन हम किसान भाई मन पा सकत है और एक ले बढ़िया लाभ कमा सकत है। ये तो रही से आज की खेती के बाद। आज रही इस खेती के बाद में ग्रीष्मकालीन लौकी की उन्नत खेती। राम राम, जय जोहार।
0: ग्रीष्मकालीन लौकी की उन्नत खेती, इस विषय पर जानकारी अभी आपने सुनी खेती की बात में, वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय का था। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर अनुराधा पौड़वाल का है और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

रामचरित मानस गाना भी आपने सुना। मुख्य गायन स्वर अनुराधा पौड़वाल का था और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब नवविहान कार्यक्रम के अंतर्गत आइए चर्चा करें स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में।

नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश भर में चुनिंदा शहरों को विकसित कर उन्हें नागरिक अनुकूल, आर्थिक रूप से सक्षम और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें पर्यावरण भी स्वच्छ हो, तकनीकी का उपयोग करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जैसे कि डेटा संचालित

व्यवस्था, कुशल शहरी सार्वजनिक परिवहन यानी कि अर्बन मोबिलिटी, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं का प्रसार, और सभी के लिए किफ़ायती आवास, खासकर गरीबों के लिए किफ़ायती आवास और मजबूत स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं। और वित्त पोषण और कार्यप्रणाली की बात यदि हम करें तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 50:50 का लागत साझाकरण मॉडल लागू है। प्रत्येक स्मार्ट शहर में परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी के लिए एक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक विशेष इकाई SPV बनाई जाती है। और मिशन ये जो है शहरों के विकास के लिए दो रणनीतियों पर काम करता है। एक रणनीति तो ये है क्षेत्र आधारित विकास यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, और दूसरा पैन सिटी पहल यानी पैन सिटी इनिशिएटिव। क्षेत्र आधारित विकास के तहत या तो किसी पुराने इलाके को फिर से विकसित किया जाता है या नए सिरे से कोई बड़ा क्षेत्र बनाया जाता है, और पैन सिटी पहल के तहत पूरे शहर के स्तर पर स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं। तो ये थी थोड़ी सी चर्चा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज सुबह ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर। यादों के झरोखे से कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और आपकी पसंद हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 10 बजे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के सुनिएगा, जिसमें हम आपको कुछ पारंपरिक बिहाव गीत और चंदैनी गीत सुनवाएंगे। कलाकार होंगे बालका अम्बालिका, उत्तराबाई कोल और रामाधार साहू। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दिन में 11 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट शाम 5 बजे प्रसारित किए जाएंगे। गांधी चर्चा का समय होगा सुबह 7:20। विषय होगा अहिंसात्मक असहयोग। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर, रजनीगंधा रात 8:15 पर और सुगम संगीत का समय होगा शाम 8 बजे। कलाकार होंगे संजय वत्सल। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और फिर शाम के 7 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, फिर सुबह के 11:30 से 11:55 तक और फिर दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक और फिर रात के 9:15 से रात के 11 बजे तक।

शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय होगा वनोपज आधारित आय, और शाम 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर शिल्पा कौशिक, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की विषय वस्तु विशेषज्ञ, श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगी। विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। कार्यक्रम संचालक होंगे महंगू भैया।

शाम 5:35 पर युवा जगत में आज की बात का विषय होगा धरती की विविधता हमारी जिम्मेदारी और सुनिएगा क्रम मेरी बारी। आज की बात का विषय एक बार फिर बता दें, धरती की विविधता हमारी जिम्मेदारी।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दिन में 11 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे प्रसारित किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीयसङ्कटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आर जी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतङ्कवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया।

0: है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? हमें पता है आप में से कुछ कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमारे कुछ और श्रोता हैं जो कह रहे हैं गर्मी का यानी गर्मी के खाद्य और पेय पदार्थों का मज़ा ले रहे हैं, है ना? सच्चाई तो दोनों बातों में है, बस हमें ये ख्याल रखना है कि जिस भी परिस्थिति का सामना हम करें धैर्य रखें, मन में असंतोष न भरने दें, तो आसानी से हर कष्ट समाप्त हो जाएगा। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज ट्रैफिक अपडेट्स में उमा शंकर पांडे जी क्या कह रहे हैं।
1: नमस्कार, यातायात संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ना कहीं कोई जाम, ना कहीं कोई यातायात रुकावट,

0: शहर से लेकर गांव-गांव तक सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है हमेशा सड़कों में धैर्य रखें, अपने वाहनों की गति में संयम रखें, यातायात नियमों के अनुरूप चलें। मित्रों, इस संदेश के माध्यम से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि अब बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था ITMS अर्थात इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से हो रही है। इसके लिए शहर की सड़कों में तमाम चौक चौराहों में 500 से अधिक अति आधुनिक स्वचालित कैमरे लगाए गए हैं। ये ईमानदार कैमरे 24 घंटे सातों दिन बड़ी ईमानदारी के साथ सड़कों को अपलक निहार रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक वाहनों पर इनकी पैनी नजर होती है। किसी भी वाहन चालक के द्वारा मनमानी करते ही अर्थात यातायात नियमों को तोड़ते ही ये निष्ठावान कैमरे उक्त वाहन की चालक सहित बहुत ही शानदार फोटो लेते हुए संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट की धारा का चालान सीधे उनके पास भेज रहे हैं। अभी तक चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था संभाल रहे यातायात के जवानों से नजरें चुरा कर यातायात के नियमों के विरुद्ध कुछ लोग निकल जाया करते थे। कुछ लोग अभी भी इसी भ्रम में हैं या कुछ जानबूझकर यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और आंखें तब खुलती हैं जब पहले 2000 और दूसरी बार नियम तोड़ने पर 5000 रुपए जुर्माने का चालान आता है। तब इनमें से कुछ लोग चालान माफ कराने यातायात थाने के चक्कर काटते हैं जबकि चालान माफ का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए पुनः आप सभी से अनुरोध है इन बातों पर गौर करें। विभिन्न चौक में लाल पीली हरी लाइट अर्थात यातायात सिग्नल का अंतिम सेकंड तक पालन करें। रॉन्ग साइड वाहन कभी न चलाएं। दो पहिया में तीन सवारी बिल्कुल न चलें। ओवर स्पीड वाहन कभी न चलाएं। बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन न चलाएं। मोबाइल से बातें करते वाहन कभी न चलाएं। नो पार्किंग में वाहन खड़ी ना करें और चौक में लेफ्ट जोन में वाहन लेकर लाल सिग्नल पर खड़े ना हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मित्रों, जैसे विविध मौसमों का, ऋतुओं का महत्व है, वैसे ही पृथ्वी की हर शय का अपना महत्व है और इसी को रेखांकित करता है आज का दिन, यानी 22 मई का दिन, जो हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, यानी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। मतलब जैव विविधता को नुकसान से बचाने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों पर जोर दिया जाए। मित्रों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जैव विविधता हमारे जीवन का मुख्य आधार है। ये हमें भोजन, स्वच्छ हवा, पानी, दवाएं और जलवायु संतुलन प्रदान करती हैं। मानव कल्याण को बनाए रखने वाले पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण

की आवश्यकता की याद दिला रहा है आज का दिन। इस दिवस का समन्वय जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैविक विविधता पर कार्यक्रम और अन्य और कई गतिविधियां करके भी लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है। तो अब चलिए एक गीत सुन लें।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मित्रों, आइए अब याद करें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को, ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता और बंगाल के नवजागरण युग के पितामह। राजा जी की आज जयंती है।

उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने के अथक प्रयास थे इनके। बाल विवाह, सती प्रथा, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया था उन्होंने। सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा राम मोहन राय जी को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा। नमस्कार।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए गांधी चर्चा सुनिए। आज का विषय है अहिंसात्मक असहयोग।

गांधी चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस चर्चा में हम गांधी जी के अहिंसात्मक असहयोग के बारे में बातचीत करेंगे। अहिंसात्मक असहयोग के कार्यक्रम में काउंसिलों, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कचहरियों और स्कूलों और सभी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल था। अपने सहज निष्कपट भाव से गांधी जी ने आंदोलन को कभी अवैधानिक नहीं समझा, क्योंकि उनके शब्दकोश में वैधानिक और नैतिक एक दूसरे के पर्याय थे। अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि यदि असहयोग आंदोलन सफल हो गया तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो जाएगी। लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने पहले तो हद दर्जे की बेवकूफ़ी कहकर इस आंदोलन की खिल्ली उड़ाई और इसे प्रभावहीन दिखाने का प्रयत्न किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिनका देश में कुछ भी स्वार्थ है उन्हें यह बर्बाद कर देगा। नरम दल के कई नेताओं ने भी इस आलोचना में सरकार का साथ दिया और गांधी जी द्वारा प्रस्तावित जन आंदोलन के खतरों पर जोर दिया। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की सफलता के लिए उपयुक्त राजनीतिक संगठन भी होना चाहिए। ये बात गांधी जी को 25 वर्ष की उम्र से ही मालूम हो गई थी, जब नेटाल के भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब अहिंसात्मक असहयोग के कुशल संगठक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नए सिरे से ढालने की आवश्यकता गांधी जी ने अनुभव की। देश के वार्षिक समारोहों और लच्छेदार भाषण करने के मंचों को ही नहीं, जनता के सतत संपर्क में रहने वाले जीवंत और लड़ाई कर सकने की योग्यता वाले संगठन की आवश्यकता थी। नए विधान के अनुसार कांग्रेस का स्वरूप व्यापक

आधार वाले पिरामिडी ढांचे जैसा हो गया, जिसमें विस्तृत आधार के रूप में तो गांव, तालुकों, जिलों और प्रांतों की समितियां और शिखर के रूप में कार्यकारिणी समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति थी। इस प्रकार के संगठन से कांग्रेस को न केवल अधिक व्यापक आधार मिला, बल्कि वो अपने दो वार्षिक अधिवेशनों के बीच की अवधि के कार्यों को कुशलता से करने योग्य भी हो गई। अब तक कांग्रेस उच्च और मध्यम वर्ग की ही बपौती थी, लेकिन अब पहली बार इसके दरवाजे गांव और शहरों में बसने वाली उस जनता के लिए खोल दिए गए जिसकी राजनीतिक चेतना गांधी जी जगा रहे थे। 1919-20 में गांधी जी देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता बन गए, क्योंकि उन्होंने लोगों को मोहित कर लिया था। लोग उन्हें महात्मा के रूप में श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते। स्वेच्छा से अपनाई हुई गरीबी, सादगी, विनम्रता और साधुता आदि गुणों के कारण वो कोई ऐसे अतीतकालीन ऋषि प्रतीत होते थे जो मानो देश की मुक्ति के लिए महाकाव्यों के बीते काल से वर्तमान में चले आए हों। देश के लाखों करोड़ों लोग उन्हें अवतार मानने लगे थे। लोग उनका संदेश सुनने ही नहीं किंतु दर्शन कर पुण्य अर्जित करने भी आते थे। उनके दर्शन का पुण्य फल करीब करीब काशी की तीर्थ यात्रा के ही बराबर था। कभी कभी तो गांधी जी जन सामान्य की इस विचारहीन श्रद्धा भक्ति से दुखी भी हो जाया करते थे। उन्होंने लिखा भी था, महात्मा होने के कष्ट को केवल महात्मा ही जान सकता है, लेकिन भारतीय जनजीवन पर गांधी जी के अत्यधिक प्रभाव का मुख्य स्रोत वो अपार श्रद्धा भक्ति ही थी। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े और पहले सुने एक गांधी जी का प्रिय भजन।

गांधी जी ने भारतीय जनता के दिल के तारों को झंझना दिया था। साहस और त्याग की अपील पर लोगों ने अपने को न्योछावर कर दिया, क्योंकि गांधी जी स्वयं भी साहस और त्याग की सचिव मूर्ति थे। जैसा कि चर्चिल ने कहा था, वो नंगे फकीर थे और उनकी इस फकीरी, संयम और आत्मत्याग के कारण ही भारत की जनता उन्हें अपने प्राणों के इतना निकट अनुभव करती थी। उनकी प्रेरणा पाकर देश के ऐसे फकीरों की संख्या तो तेजी से बढ़ने वाली थी। वैभवपूर्ण जीवन का परित्याग कर गांधी जी के नेतृत्व में जेल जाने की प्रतिस्पर्धा करने वालों में मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चितरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन लोगों के लिए जीवन ने एक नई अर्थवत्ता ग्रहण कर ली थी। बड़ौदा के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने एक गांव से लिखा था, लगता है मेरी आयु 20 वर्ष कम हो गई है। हे भगवान, कैसा विलक्षण अनुभव है। साधारण व्यक्ति के लिए मेरे हृदय में प्यार उमड़ रहा है और स्वयं भी साधारण व्यक्ति हो जाना कितने बड़े सम्मान की बात है। ये फकीरी पहनावे का जादू है जिससे सारे भेदभाव समाप्त हो गए हैं। असहयोग के इन्हीं दिनों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं आंदोलन में इस प्रकार तल्लीन हो गया था कि पुराने संबंधों, मित्रों और पुस्तकों को छोड़ बैठा। अखबार भी केवल आंदोलन के समाचार के लिए पढ़ता था। यहां तक कि अपने परिवार, पत्नी और बेटी को भी करीब करीब भूल बैठा था। 1920 की शरद ऋतु से असहयोग आंदोलन में तेजी आई। शुरू में तो सरकार का दृष्टिकोण सतर्कता बनाए रखने का था, क्योंकि सरकार उदार विचार के लोगों को विमुख नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कठोर दमन चक्र नहीं चलाना चाहती थी। अप्रैल 1921 में भारत आने के बाद शीघ्र ही नए वायसराय लॉर्ड रीडिंग गांधी जी से मिले। अपने पुत्र को लिखे निजी पत्र में लॉर्ड रीडिंग ने स्वीकार किया कि ऐसे असाधारण आगंतुक से मिलकर उन्हें भावावेश ही नहीं, करीब करीब रोमांच भी हो आया था। उसी पत्र में उन्होंने गांधी जी के धार्मिक और नैतिक विचारों की सराहना की थी। साथ ही लॉर्ड रीडिंग ने यह भी कहा है कि गांधी जी द्वारा राजनीति में धार्मिकता और नैतिकता का प्रयोग उनकी समझ में नहीं आया। ये कुछ बातें थी गांधी जी के अहिंसात्मक असहयोग के बारे में। आज की गांधी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

गांधी चर्चा अभी आपने सुनी, विषय था अहिंसात्मक असहयोग। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है और अब समय हो चला है कार्यक्रम यादों के झरोखे से में पुराने गीत सुनने का। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधना फिल्म के इस गीत से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, साहिर के बोल एंड दत्ता का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिर का लिखा गीत अभी आपने सुना। एन दत्ता का संगीत था, फिल्म का नाम था साधना। और अब आइए सुनते हैं श्री 420 फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया

आया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: साहब बीवी और गुलाम, इस फिल्म का गीत आ रहा है गीता दत्त की आवाज में, शकील वदायनी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायनी के बोल नौशाद का संगीत, और मेरे महबूब फिल्म का टाइटल सॉन्ग है।

और अब कार्यक्रम के अंत में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, फिल्म का नाम नजराना।

0: नजराना फिल्म के इस गीत के साथ ही यादों के झरोके से कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: मैं भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए CBI की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों

0: पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते

0: हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जाँच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी

0: मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है, सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akash. Ashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी बहुत ही नायाब है और इस पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब इस जैव पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। श्रोताओं, हम जब अपने पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें जल, वायु, इस तरह के जो तत्व होते हैं ये हमें धरती पर स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। ये एक सीमित संसाधन है, इन्हें बचाए रखना, संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। और श्रोताओं, जल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 70% से ज्यादा भाग जल से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी में नदियां, तालाब, सागर, महासागर जैसे जल के कई स्रोत हैं, लेकिन पीने के पानी के स्रोत कम ही हैं। और श्रोताओं, शनह शनह जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे पृथ्वी में पानी की मात्रा घटती जा रही है। तो श्रोताओं, जल संरक्षण हमारे लिए काफी आवश्यक है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और श्रोताओं, जल संरक्षण की बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, ये एक सामूहिक दायित्व होता है जिसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है और इसके लिए स्वतः जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। श्रोताओं, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से वीरेंद्र सिंह जी हैं जो जल संरक्षण के कार्य से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं वीरेंद्र सिंह दलिया राजरा, जिला बालोद से हूँ। विगत 28 वर्षों से जल संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें मैं पारंपरिक हमारे जो है तालाब, कुआं, इन्हें बचाने के लिए मैं जन सहयोग से जुटा हुआ हूं। अब तक छत्तीसगढ़ में 40 तालाबों की सफाई कर चुका हूं। हमारे बालोद जिला का एक तांदुला नदी है, जन सहयोग से इसमें मैंने हर साल अपना योगदान देता हूं और लोगों से निवेदन करता हूं कि

0: नदियों को भी स्वच्छ रखें, इसमें कूड़ा करकट प्लास्टिक पॉलीथीन ना फेंकें, और हमारे तालाब जो धरोहर हैं इन्हें बचाना है। आप इसमें आसपास नहाते हैं तो रैपर प्लास्टिक दातुन ये सब इस पानी में ना फेंकें, इससे पानी प्रदूषित होगा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ का वाटर लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तालाबों का ही और कुओं का ही है।
1: तो वीरेन जी, जैसे आप आलो जिले से हैं जो दलीराजरा ग्राम है, तो ये जो है एक तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्य जो क्षेत्र है, यहाँ कई तालाब हैं, पोखर हैं, नदियाँ हैं यहाँ पर, और जल के कई स्रोत हैं। तो जब जल संरक्षण का कार्य आपने शुरू किया और आज तक आप देखते हैं कि जो जल के संसाधन थे उनमें क्या अंतर आया है, ये बढ़ रहे हैं कि सिमट रहे हैं?
0: वर्तमान में मैं जहाँ दिल्ली राज रहा हूँ, कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो 24 घंटे उनके जल प्रवाह होते रहते हैं। आज पानी की तो हमारे यहाँ भरपूर है, बाकी इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तालाब भी सिमट रहे हैं। छत्तीसगढ़ तालाबों के नाम से जाना जाता था, लोग अब उसे पाट कर आसपास घर बना रहे हैं, कुओं को पाट कर घर बना रहे हैं, जिससे अब पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, धरती में समा रहा है। हम सबको एक जरूरी काम ये करना है कि अपने खेतों में भी पानी के संरक्षण के लिए डबरी उबरी बनाएं, और किसानों से भी निवेदन करते हैं कि आप गर्मी के दिनों में धान ना बोएं, इसकी जगह कम पानी वाली फसल लें, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और उन्नत कृषि का दर्जा पाएं। ये छोटे छोटे प्रयास अभी हम किसानों के साथ भी कर रहे हैं।
1: जी जी जी वीरेन सिंह जी, तो हम एक जो मूल सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है?
0: सोचो, एक पल ना होगा जल तो क्या होगा कल, जल बिना सब सुना, ये कहावत तो हमने सुनी है। वर्तमान में धरती का बढ़ता हुआ तापक्रम और पानी का जल स्तर गिर रहा है दिन प्रतिदिन। पूरे वर्ल्ड में 71% पानी है खारा पानी, जो पीने योग्य नहीं है। इसमें से मात्र हम 3% पानी का उपयोग मीठा जल के लिए कर रहे हैं, इसमें आधा से अधिक तो ग्लेशियर हैं। आज हमारे आसपास जो वर्षा जल है इसको बचाना है। वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, चाहे कुओं के माध्यम से या डबरी के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से धरती तक पहुंचाना होगा, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे और हमें पीने का पानी मिलेगा। ये सब छोटा छोटा प्रयास हम सबको करना होगा।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं, तो आपने जल संरक्षण में अभी तक कौन-कौन से कार्य किए हैं?
0: जल संरक्षण में सर मैंने जन सहयोग से अब तक 28 वर्षों में 35 से 40 तालाब को साफ सफाई की है हम छत्तीसगढ़ के, और वर्तमान में भी ये जारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तालाब हैं, वर्तमान में गाँव के लोगों को लेकर इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रयास अभी जारी है।
1: वीरेंद्र सिंह जी, जब हम छत्तीसगढ़ में आपके किए गए कार्यों की बात करते हैं, तो आपको वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो ये उपाधि आपको कब मिली और क्यों मिली?
0: वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ मुझे अभी 2026 में कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड घोषित हुआ, वहाँ मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे छोटे छोटे प्रयास तालाबों को संरक्षण के लिए लेकर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जन सहयोग भी मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब से छत्तीसगढ़ शासन ने कोपरा जलाशय में सम्मानित किया। इसके लिए सर मैं जल संरक्षण के काम अपने घर के आसपास से लोगों से निवेदन करता हूँ कि व्यर्थ पानी को बहने ना दें, जहाँ भी पानी बहे उसे रोकना होगा। और मैं तो जहाँ रहता हूँ दल्ली राजहरा, वहाँ तो पानी 24 घंटा अविरल जल धारा प्रवाह है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तो इन्हें बचाने के भरकस प्रयास करता हूँ। तो लोग आसपास भी मुझे आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ भी आइए और एक अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए। तो मैं गांव में जाता हूँ, वहाँ भी तालाबों को बचाता हूँ, वहाँ भी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को लेकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, स्काउट गाइड सबको लेकर एक जन जागरण नुक्कड़ माध्यम से गाँव वालों को संदेश देता हूँ कि जल को बचाइए, बारिश के जल को आप सब इसको कैच करना है और इसका संरक्षण करना है, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे।
1: जी, तो वीरेंद्र सिंह जी, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हम जल का क्षरण कर रहे हैं या जल को हम बर्बाद कर रहे हैं?
0: जल का बर्बादी तो हम अपने घरों से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमें पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम उसका व्यर्थ उपयोग ना करें। जैसे हमें शेविंग करना है, सावर से नहाना कोई जरूरी नहीं, आप मग और बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी से उपयोग कर सकते हैं, स्कूटर को बाल्टी से लेकर आप साफ सफाई कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द घर के आसपास कोई नल बह रहा है तो उसको बंद करिए, अपने बच्चों

0: को भी उसको बाल्यकाल से प्रेरित करिए, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए उन्हें आपके संस्कार में शामिल करना होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इस स्वस्फूर्त जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। हमें इन्हें अपने घर के आसपास या स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित करना होगा। मैं अब तक छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख बच्चों को 28 सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर चुका हूँ और निरंतर मेरा प्रयास जारी है।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो क्यों ना हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लें और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: सर, मेरा पसंद का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में मिलेंगे राहें बहार के, ओ राही ओ राही।
1: वीरेंद्र सिंह जी ने जो गीत पसंद किया है, आइए सुनते हैं।

0: चाहे। श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे वीरेन सिंह जी से, जिन्हें वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये जल संरक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वीरेन सिंह जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे, जो आपने कार्य किए हैं इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, उन्हीं में से एक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपको वाटर हीरो और जल प्रहरी के नाम से भी सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि ये सम्मान आपको कब प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ, और ये इसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं?
1: लगातार 26-27 वर्षों से जल संरक्षण के लिए प्रयास करते हुए मुझे जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 में वाटर हीरो और जल प्रहरी सम्मान से देकर मुझे सम्मानित किया, और मुझे बहुत खुशी भी और मुझे ऊर्जा भी मिला। लगातार उसके बाद मैं और जल संरक्षण के लिए जोर शोर से भिड़ा हुआ हूँ, और आसपास के लोगों, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों और अपने से ग्रामीण जनता हो, सबको अब साथ लेकर हम जल के लिए जुड़ चुके हैं। किसानों से साथ हम बैठ रहे हैं कि अब जल के एक एक बूंद बचाना है, बारिश के जल को बचाना है। हमारे पास

0: हमारे पास तालाब हैं, कुआं हैं, बारिश के जल को वहाँ तक धरती तक पहुँचाने के लिए हमारे पास माध्यम है, वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अपनाना है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हम सब कर रहे हैं।
1: तो वीरेन सिंह जी, जैसे आपके दल्ली राजरा का क्षेत्र है, बालोद जिला का है, तो वहाँ आपको ग्रीन कमांडो के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ग्रीन कमांडो क्या होते हैं।
0: सर हरियाली के लगातार मुझे प्रयास करते हुए बहुत लंबे समय हो गए, तो मुझे शुरुआत करने में 8-10 युवाओं को लेकर जब शुरुआत किया था 25 साल पहले, हमने छोटे छोटे प्रयास करते थे, वृक्षारोपण, गांव में जाकर आसपास बोरिंग तालाबों की सफाई करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। हमने साइकिल से यात्रा करके रात में नुक्कड़ नाटक करके 2007 में हमने पूरे छत्तीसगढ़ का साइकिल से भ्रमण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नुक्कड़ के माध्यम से संदेश दिए। 2008 और 9 में हम भारत और नेपाल की यात्रा की है साइकिल से, और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पेपर पाम्पलेट के माध्यम से उनको संदेश दिए, और वर्तमान में भी हम लोगों से निवेदन करते हैं आप साइकिलिंग ज़्यादा उपयोग कीजिए, पेट्रोल डीजल का हमें बचाना है ये, और बिजली का भी बचत करना है। तो ये सब हम के छोटे छोटे प्रयास से ये सब ऊर्जा हम बचत होगी और हम देश में आगे एक बढ़ते चले जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है वीरेन्द्र सिंह जी। तो वीरेन्द्र सिंह जी, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके लिए हमारा नाम होता है, आपके अच्छे कार्य के पुरस्कारों की बात करते हैं, तो इसकी एक काफी लंबी फहरिस्त आपके पास है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं।
0: सर मुझे तो वाटर हीरो और जल प्रहरी के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे 2023 में सम्मानित किया, इसके साथ साथ 2011 में छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर ने इन्होंने भी सम्मानित किया मुझे, और अब वर्तमान में 2026 में सीट्स संस्था ने रांची में मुझे एकम सम्मान से सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे 26 साल हो गए, इसके लिए एकम सम्मान मुझे मिला। नित्य नए नए अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश देने लग जाता हूँ।
1: तो वीरेन्द्र सिंह जी, जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें जो है प्लास्टिक काफी हानिकारक हो रहा है, और इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और इससे जलाशयों और जल के संरक्षण में किस तरह बाधा आती है।
0: वर्तमान में हम शादी ब्याह में भी जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक की जगह आप स्टील का गिलास उपयोग कीजिए, दोना पत्तल का उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण अंचल में अभी लोग दोना पत्तल तो उपयोग कर ही रहे हैं। वर्तमान में शहरों में थोड़ा सा देखा जा रहा है डिस्पोजल का ज़्यादा उपयोग। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि स्टील गिलास का उपयोग करिए और अपना काम करिए, इस प्लास्टिक पूरे नदी तालाब और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं। ये तो गलते भी नहीं, और धरती में ये पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, बंजर भूमि को बंजर कर रहे हैं, गौ माता के पेट में समा रहे हैं। तो हम सबको अब सोचना होगा कि इसके जगह वैकल्पिक रूप हम स्टील गिलास ही उपयोग करें और शादियों में दोना पत्तल का उपयोग करें, प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल ही ना करें,
1: जी, तो ये जन जागरूकता से ही प्लास्टिक इस्तेमाल को रोका जा
0: रोका
1: सकता
0: जा
1: है।
0: सकता
1: जी,
0: है।
1: तो वीरेन्द्र सिंह जी, आपने अभी ये बताया कि कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है, और यहाँ पर भी वेटलैंड संरक्षण के कार्य के लिए आपको बर्ड वॉक ऑफ संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये आयोजन कैसा था और इस आयोजन का क्या महत्व था।
0: ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित किया गया। इसमें देश के और भी विशेषज्ञ आए हुए थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया और कुछ अपना पक्ष रखने को दिया गया। तालाबों और वेटलैंड को भी बचाना बहुत जरूरी है। ये वेटलैंड साइड हमें मत्स्य हो चाहे कृषि हो, ये हर क्षेत्र में इनका योगदान होता है। वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए हमें, ये बात मैंने वहाँ रखी थी कि इसे भी प्रदूषण से बचाना होगा। आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरियाली लाने के लिए भरकस प्रयास सब ग्रामीणों को लेकर करना होगा।
1: तो आपने एक बात और बताई थी, एकम सम्मान 2026 में आपको दिया गया, साथ ही बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2023 में आपको दिया गया, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: छत्तीसगढ़ शासन 22 मई 2023 को जैव विविधता पुरस्कार और 25,000 रुपये से मुझे सम्मानित किया था। मैंने जंगलों में आग लगाने से और जीवों को बचाने के लिए, जैसे गर्मियों में मिट्टी के सकोरे, हर वर्ष 200 सकोरे लोगों को भेंट करता हूं, और जंगलों में जाकर वहां पानी की व्यवस्था करता हूं कि जो पशु

पक्षियों के लिए और आग को स्वयं बुझाता हूँ। इसलिए शासन ने मुझे जैव विविधता का पुरस्कार भी दिया था। वर्तमान में भी गर्मी के दिनों में लोग महुआ को बीनने जाते हैं और उस नीचे वृक्ष के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे पूरा सारा जंगल में आग फैल जाता है। तो ये जन जागरूकता भी मैंने चला रहा है कि आप महुआ को बीनने से पहले उसे झाड़ू से साफ करिए, जंगल को बचाना जरूरी है। आज ये जंगल रहेगा तो जैव विविधता रहेंगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। वर्तमान में मैं

0: इसको इसको आप जंगलों में फेंकिए, कम से कम ये हरा भरा जंगल होंगे, फल फलेंगे तो पशु पक्षियों के भी काम आएंगे। तो वर्तमान में अभी मेरा ये काम बारिश से पूर्व हरियाली लाने के लिए मैं सीड बॉल और बीजों को एकत्रित करके जंगलों में फेंक रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि आपके घर में जो जामुन के बीज मिलेंगे, अभी आम के गुठली मिलेंगे, इन्हें जंगल में फेंकिएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दीजिएगा।
1: जी, वीरेंद्र सिंह जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से काफ़ी भरपूर है। और जब हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, दल्लीराजहरा बालोद क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वहाँ भी हमारा वन आच्छादित प्रदेश है। और जब देखिए, जब वनों की बात होती है, तो वहाँ वन्य जीवों का भी जो है उनका वो एक प्राकृतिक रहवास है। पेड़ पौधों का काफ़ी कटाव किया जा रहा है, जिससे इनकी धमक जो है अब गाँवों में हो गई है, ये घरों तक पहुँच गए हैं। तो इसका जो कारण है, हमारा जो मानव अस्तित्व का जंगल की ओर बढ़ना, इसे आप कैसे देखते हैं?
0: यूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ 44% हरियाली से आच्छादित है। उसमें एक जिला है हमारा बालोद जिला, वहाँ डैम है, बहुत बड़ा तांदुला जलाशय, और दल्ली राजहरा में भी कई प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण आसपास आपको रात को जब भी आप कभी विचरण करेंगे, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू और हिरण, ये सब आपको बंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और राजहरा बालोद के मार्ग में आप गुजरते, बस में कभी भी जाएं या रात्रि को विचरण आप किसी भी माध्यम से जाएं, तो आपको हिरण अवश्य देखने को मिलते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है कि ये इन्हें नेचुरल जगह मिला हुआ है। आम जनता से निवेदन किया जाता है कि आप इसको संरक्षित करने के लिए भी आप अपना योगदान दें और जंगलों को ना काटे। जब भी कहीं आग लगे तो वहाँ अपने फॉरेस्ट वाले को सूचित करें, जंगल को बचाएंगे तभी वन्य प्राणी बचेंगे और तभी पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा।
1: जी, वीरेंद्र सिंह जी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में हर माह के आखिरी रविवार को आते हैं, और वे अपने मन की बात साझा करते हैं आम जन भारत की जनता से। तो उसी कार्यक्रम में आपकी भी बातें एक बार साझा हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में चर्चा किए थे, तो वो कब की बात है और उसमें आपकी जो बातें शामिल हुई थी उसके बारे में आप बताएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा ये पूछा। आजकल वर्तमान में मैंने कुछ विगत वर्षों, करीब 10 वर्षों से शादियों को एक मॉडल के रूप में, मतलब उसमें मैं दो परिवारों के साथ सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, तो मैं शादी के माध्यम से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर एक महाअभियान अपने जिले में शुरुआत किया है। शादी होते हैं वर वधु के, तो मैं पौधा के साथ साथ वहाँ पोस्टर बैनर लेकर जाता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में जल समस्या है, तो जल वर वधु को पौधे गिफ्ट करके वहाँ जितने भी खड़े हैं, जल स्लोगन लिखा हुआ रहता है, जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, ये पोस्टर। और जैसे बारात उरात में जा रहे हैं तो दूल्हे के गाड़ी में मैं पोस्टर लगाता हूँ, आओ जल बचाएं। तो एक संदेश के साथ साथ, और जैसे बैंड बाजे के साथ इनका जब बारात निकलता है तो हम पोस्टर भी पकड़ लेते हैं, जल का संरक्षण का, वन्य प्राणी का संरक्षण का, तो एक नया संदेश जाता है। ये इसी तारतम्य में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे छोटे छोटे प्रयास जल संरक्षण के 101वीं कड़ी में उन्होंने अवगत कराया, शादी में बारात, जल बारात दूल्हा द्वारा निकाला गया, तो वो बहुत अच्छा लगा, याद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिला और हमारे कार्य को गति मिल रहा है और लगातार और अच्छे से हम कुछ नया नया आइडिया लेके आ रहे हैं, लोगों को कैसे ध्यान आकर्षण करें जल बचाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। मैंने अपने कपड़े में भी वन्य प्राणी संरक्षण, वन को आग से बचाने का पूरा ड्रेस ही सिला लिया है। जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है, जैसे अभी जंगलों में मुझे जाना होता है आसपास के गांव में, तो मेरे ड्रेस में लिखा है वनों को आग से बचाओ, वन्य प्राणियों का ड्रेस है। तो स्कूलों में चल जाता हूँ तो बच्चे मुझे अट्रैक्ट होके देखते हैं, वो स्वस्फूर्त उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, जल बचाने के लिए भी मेरा ड्रेस बना हुआ है। और वृक्षारोपण को जब बालू जिला में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, और ड्रेस के माध्यम से मैं पूरे स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को बोलता हूँ, ये आपको भी अपने धरती माँ की रक्षा करना है, इसलिए आपको भी एक पौधा लगाना है स्कूलों में और इसका संरक्षण करना होगा। पानी जब आप पीते हैं बॉटल में लाते हैं, इसे फेंकना नहीं, आपने स्कूल के

0: गार्डन में इसको फेंक डालिए पानी को, ये पौधा बड़ा होगा तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, और आप जब भी जहाँ जाएंगे फिर याद आएगा कि हमने ये पेड़ को बड़ा किया था।
1: जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका वीरेंद्र सिंह जी। और अब बेशक ही आपकी इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ हरियाली से भरा प्रदेश तो है और हरा भरा होगा। और कार्यक्रम में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं, आपसे मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जल संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, वन्य प्राणी संरक्षण हो, जंगल को बचाना हो, इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हम अपने अपने घरों से करिए। आने वाले अपने आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं, इनको एक ऐसा संस्कार दीजिए कि पानी का उपयोग जितना होना है उतना ही करें, बिजली का उपयोग जब काम हो तभी इसका उपयोग करें, आसपास कहीं जल बह रहा हो तो उसे बंद करने के बच्चों को बताइए, और ये छोटे छोटे प्रयास बच्चों को मन में अभी से हम उनके बीज बोएंगे पर्यावरण संरक्षण का, ये आगे चलकर एक नागरिक बनेंगे और ये काम करके देश में अपना नाम रोशन करेंगे, और इसके लिए हम सबको भी छोटा छोटा योगदान देना होगा। अभी इस गर्मी में आप सबको देख रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो बारिश में आप भी एक एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण कीजिए, खेतों में भी आप फलदार पौधा लगाइए, आपका आय का स्रोत बढ़ेगा, इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। सभी किसानों से मेरा ये हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेंगे और कम पानी लगेगा वह फसल बोएंगे, और बारिश के पानी को धरती तक पहुँचाने के लिए हम कुआं तालाब अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करेंगे और जल स्तर को बढ़ाएंगे। मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा, धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार, मानव और विज्ञान का गहना, पर्यावरण धरती का है गहना। तो मैं अपने बच्चों को भी ये दोहा बोलिएगा, बच्चे एक वृक्ष अनेक, जहां है हरियाली वहां है खुशहाली।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। और श्रोताओं, वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैं, इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम अवश्य होगा। और जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने कई पौधे लगाए हैं, और इनके जो प्रयास हैं वो आज नहीं, वो आने वाले समय में प्रकट होंगे। तो श्रोताओं, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है, और हमें अपनी धारा को बचाने के लिए अपने जितने भी प्रयास करने चाहिए हमें करने चाहिए। इसी का संदेश आज वीरेंद्र सिंह जी ने हमारे कार्यक्रम में दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हम जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आप आ जाए और हमारे श्रोताओं से जो इतनी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपने छत्तीसगढ़ के सभी श्रोताओं तक अपनी छोटे छोटे प्रयासों को पहुंचा सका है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी रायपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। इनसे मिलिए, ये कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है।

0: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से सुबह के 9:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और सुबह 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
3: कार्यक्रम चित्रलोक में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयां, औषधियां, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है, और जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायिनी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ, प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं।

पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें, जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है, और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का।
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में। ये अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये

आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवा में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के कुशहा गांव में आयोजित चौपाल के दौरान नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित कामयाबी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विज्ञान और गणित जैसे विषयों को अधिक रोचक तथा व्यावहारिक तरीके से समझाने में सहायक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले को स्टेट कैपिटल रीजन SCR में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने गुरुवार को राजनांदगांव में आयोजित व्यापारी महाअधिवेशन में इस संबंध में घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवालय द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गति

0: विधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103। प्रादेशिक समाचार अभी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुने पारंपरिक बिहाव गीत। कलाकार हैं बालका अंबालिका और उत्तराबाई कोल। साथ में हैं साथी भी।

गंधिया तीर के पटुआ भाजी उलुवा उलुवा दिखते हो, आए है बरतिया मन हा बुढ़वा।

0: पारंपरिक बिहाव गीत अभी आपने सुना, कलाकार थे बालका अंबालिका और उत्तराबाई कोल।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

0: 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और अब आइए सुनते हैं चंदैनी गीत। कलाकार हैं रामाधार साहू और साथी।

0: पारा पाली की गड़गौरा सोला गली कर खोर
1: हाँ
0: जहाँ बसे चंदा बरी नरे लोरी भैया जी कर ले
1: वैसो
0: का बताओ संगी राजा महल के राज है छे आगे छे कुरी झेरिया को सरे राउते
1: अच्छा
0: राजा महल के भैंस के पांडू दिखाए के खातिर नौकी लगे हावेरे
1: संगवारी मो

0: का बड़ा मला देख तो
1: अच्छा?
0: राजा महल के सोन सागर भी इसका सोन पड़ो देखी सब है
1: देखी सी
0: हम ये बारा पालिक शहर में नौकरी लगे हाँ रे
1: सांगवारी
0: राजमई चंदा लोरी
1: हाँ
0: 12 साल

0: ये देखे वर सही लागा थे
1: लागा ये तो
0: मोरा सुन ले बे के
1: वाट ये तो
0: राजा महल के बेटिया
1: बेटिया तो
0: मोरे संगे में जोड़ी
1: जोड़ी ये तो
0: ये अनुपिया के भैया
1: भैया ये तो
0: ये दे आए हवे राऊ
1: आए हे

0: राज में चंदला इठल बिठल केवर देखे
1: हाँ।
0: बड़ा खुश हो गए भाई राजा के बहु एका बेटी आवे
1: अच्छा
0: कैसे पूछना लागे रे
1: संगवारी मो
0: उत्ता के बेरिया में रागी अच्छा। लोरी का के कहे केवट
1: कैसे
0: हम राजा महार के हैं नौके लगे हवन
1: लगे
0: बारा पाली के गौरा शहर के रवैया हवन
1: हरन हरन
0: उत्ता बात ले सुन के हाँ। चंदा मन मन हासना लागे रे
1: संगवारी मो
0: मोरा काठवा के डोंगा
1: डोंगा ये तो
0: कामे नहीं

0: सुख सुख बांस के डोंगा बनाए रागी
1: बनाई से
0: 12 जगह पाती बांधे हावे
1: बांधे
0: लोरी चंदा नदी पार हुआ थावे एतिक बात एति छोड़ो
1: ता
0: नदी के पार में इठल बिठल के उठावे
1: हावी हावी।

चंदैनी गीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे रामाधार साहू और साथी। इसी के साथ गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब पेश है कार्यक्रम जिसका इंतज़ार है आपको, आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, पसंद आप सभी की, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ग्राम पहरा अहिवारा दुर्ग के श्रोता हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, मिलव दास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास कुलदीप, बिरजा, संजना, लक्की, आप सभी शांतिनगर भाटापारा से। भाटापारा से ही हमारे ये श्रोता हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम टेलर, जितेन साहू, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से हैं सियाराम टेलर, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, और रायपुर से हैं नीलू मेघ, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मायाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी भाफिया रजक, कुमारी टानिया रजक, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, मजरू के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: मुझको नहीं कहना था, झुकके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता।
1: अरे प्यार हुआ है जब से।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट,

0: या तो काट।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब आइए सुनते हैं अगला गाना हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सनी और कोमल यादव। हथनी पारा भाटा पारा से हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, मुकेश वर्मा, हरीश दुलारी वर्मा, शीतल और किरण। और ग्राम महमद भक्तिन बाजार से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा आदित्य देवांगन, गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन। ये हैं बम्बर चाटी डी से। रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फैज खान, हजीरुन्निशा, सादिया खान, आप सभी शांतिनगर भाटापारा से। बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो। और ओवरेठी पारा भाटापारा के श्रोता हैं अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू और मोनिशा साहू। आप सभी की पसंद पे आइए सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में इंदीवर का लिखा हुआ गीत है, राजेश रोशन का संगीत और फिल्म का नाम कामचोर।

0: कामचोर फिल्म के इस गीत के बाद अब आइए सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर का पुनः प्रसारण उमा शंकर पांडे जी से।
1: नमस्कार, यात्रा संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ना कहीं कोई जाम, ना कहीं कोई यातायात रुकावट। शहर से लेकर गांव-गांव तक सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, हमेशा सड़कों में धैर्य रखें, अपने वाहनों की गति में संयम रखें, यातायात नियमों के अनुरूप चलें। मित्रों, इस संदेश के माध्यम से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि अब बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था ITMS अर्थात इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से हो रही है। इसके लिए शहर की सड़कों में तमाम चौक चौराहों में 500 से अधिक अति आधुनिक स्वचालित कैमरे लगाए गए हैं। ये ईमानदार कैमरे 24 घंटे सातों दिन बड़ी ईमानदारी के साथ सड़कों को अपलक निहार रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक वाहनों पर इनकी पैनी नजर होती है। किसी भी वाहन चालक के द्वारा मनमानी करते ही अर्थात यातायात नियमों को तोड़ते ही ये निष्ठावान कैमरे उक्त वाहन की चालक सहित बहुत ही शानदार फोटो लेते हुए संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट की धारा का चालान सीधे उनके पास भेज रहे हैं। अभी तक चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था संभाल रहे यातायात के

जवानों से नजरें चुराकर यातायात के नियमों के विरुद्ध कुछ लोग निकल जाया करते थे। कुछ लोग अभी भी इसी भ्रम में हैं या कुछ जानबूझकर यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, और आंखें तब खुलती हैं जब पहले 2000 और दूसरी बार नियम तोड़ने पर 5000 रुपए जुर्माने का चालान आता है। तब इनमें से कुछ लोग चालान माफ कराने यातायात थाने के चक्कर काटते हैं, जबकि चालान माफ का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए पुनः आप सभी से अनुरोध है इन बातों पर गौर करें। विभिन्न चौक में लाल पीली हरी लाइट अर्थात यातायात सिग्नल का अंतिम सेकंड तक पालन करें। रॉन्ग साइड वाहन कभी न चलाएं। दो पहिया में तीन सवारी बिल्कुल न चलें। ओवर स्पीड वाहन कभी न चलाएं। बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन न चलाएं। मोबाइल से बातें करते वाहन कभी न चलाएं। नो पार्किंग में वाहन खड़ी ना करें और चौक में

0: दो पहिया में तीन सवारी बिल्कुल न चलें, ओवर स्पीड वाहन कभी न चलाएं, बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन न चलाएं, मोबाइल से बातें करते वाहन कभी न चलाएं, नो पार्किंग में वाहन खड़ी न करें और चौक में लेफ्ट जोन में वाहन लेकर लाल सिग्नल पर खड़े न हों। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर पांडे जी से।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत पहुंच रहा है आप सभी की पसंद पे। ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, आप लुतरा खमरिया से, दत्रेंगी भाटापारा से हैं नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिंह, ग्राम रसेड़ा अकलतरा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू, साथ में हैं वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, दत्रेंगी से हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मी यदु और लालपुर से हैं लुकेश यदु और समीर यदु। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं बलमा फिल्म का ये गाना। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

बलमा फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए

0: उन्हें पानी में सरकते हुए वहां आगे चले जाते हैं जहां मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चली ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है।
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है।

0: वो का तो काम ही है कहना, कह दो उन्हें सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
0: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
1: हाँ।
0: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उंडेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: अजी सुनिए।
0: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
0: हाँ,
1: ये देखो
0: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा
2: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे ये। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शहर हो।

0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11:30 होने वाले हैं। अब से 11:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना और श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाला और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

0: मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्र गीत।
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
2: जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों की महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं, फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इन दिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूं मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं, अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने, बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है, थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर हैं। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं, हे गर्मी तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया, देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया, वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे, गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती, गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा, लाग बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस

संदेश की इबारत में। याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती तन से बहुत पसीना आता हाथ सभी के पंखा रहता आरे बादल काले बादल गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती है। इसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारद, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है यहाँ वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर 1 किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, 2 घड़ी भी चैन नहीं आता है। ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन, गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। और ताजा हो रहा है ये संदेश, गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और

0: हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है, कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं, देखिए है आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौत।

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल

गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है, मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में था, दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है, वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है,

दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है। इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूं, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान, यह है जून का महीना। हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ, जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1 2 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बाप रे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओह, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किनकी है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय

वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द ढाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है, इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन,
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना, सेक्रेटरी पीसी लियोन।
0: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। 22 साल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस 22 साल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
2: बंग भंग विरोधी आंदोलन

0: में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
1: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9,000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से

0: तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
0: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार

0: उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवनंतपुरम राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित

0: किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं। जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ है, लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर का ही काम।

0: करती हूँ।
1: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउसवाइफ की तो जो पूरी
0: जी
1: जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि
0: जी
1: आप जिम्मेदारियों को अपनी बखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी,
0: जी
1: आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: जी जी जी मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठने उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है तो
1: जी
0: चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं फिर फ्रेश वगैरह होते हैं। ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है तो
1: जी
0: सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
1: जी
0: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा
1: जी
0: बर्तन है,
1: जी
0: तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना,
1: जी
0: फिर उन लोग को नाश्ता कराना, ये सब।
1: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
0: जी, बेटा बड़ा है
1: जी
0: और गुड़िया है वो छोटी है अभी।
1: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
0: भी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक
1: अच्छा।
0: है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
0: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकने का जो होता है
1: जी
0: वो सब बनाती हूँ। और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे
1: क्या
0: बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये
1: जी,
0: सब।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
0: जी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
1: जी
0: खाने दाल छीलो।
1: अच्छा, तो लीजिए आपको
0: जी
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती। ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है।
1: जी,
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सकें बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और
0: जी
1: बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं
0: जी
1: वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं,
0: जी
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की
1: जी
0: केक सिखाती होंगी। तो
1: बिल्कुल
0: केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो,
0: जी
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है,
0: जी
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का,
0: जी
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो
0: जी
1: हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो,
1: जी
0: नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी
1: बिल्कुल,
0: होनी
1: नाप
0: चाहिए
1: तौल।
0: उसमें। इसके लिए तो
1: जी,
0: मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा
1: कप्स
0: जाता
1: आते
0: है।
1: हैं। हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी, जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले,
0: जी
1: चाहे कोई पतीला ले,
0: जी
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक।
0: जी
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड, जिससे हम बर्तन रखते हैं, वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है, जो एल्युमिनियम की आती है
0: जी
1: बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे, और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20

0: मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है। और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सबकी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारी विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में
1: बस
0: बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है,
0: जी
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है। देखिए, आज
1: हाँ
0: आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी?
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या-क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी ये बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं, अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी,
0: जी
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
0: जी
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात है।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के, और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, अब
1: हाँ
0: कहीं भी
1: हाँ
0: बैठे
1: हाँ
0: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
1: हाँ
0: लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था, वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना
1: हाँ
0: कल्पना
1: वही
0: जी?
1: साधन था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ,
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है। हाँ
0: जी।
1: हाँ मतलब
0: और
1: बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला,
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, यानी सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
0: क्या
1: हमेशा।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, तो
0: क्या
1: ऐसे
0: बात है।
1: सबको का। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी,
0: जी जी
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: फ्री हैं एकदम, तो
0: जी
1: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी, वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो बड़ा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: ये सब
0: लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना
0: ठीक है
1: सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं, इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध
1: जी
0: भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं, तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात
1: बिल्कुल
0: करके। और अच्छा, ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है
1: खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं, या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं,
0: खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है, थोड़ा हेल्दी
0: जी
1: रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि
0: अच्छा
1: हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता
0: क्या बात है, आप
1: है।
0: हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह।
1: जी,
0: और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा, किनारा
0: क्या बात है
1: फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि
1: जी जी
0: आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही
1: हाँ
0: हैं?
1: जी मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैम, मैं डॉली बोल रही हूँ भोपाल से।
0: डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी,
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो, प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं,
0: जी जी जी
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ, जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है
0: जी
1: या दही की लस्सी है, ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है पीने
0: क्या बात है।
1: से।
0: और आम का पन्ना नहीं बनाती आप?
1: मैम आम का पन्ना नहीं बनाते हम, सिर्फ जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है, और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है,
0: जी जी
1: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित, सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा, ये
0: जी
1: है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1, 2, 4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम आशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दर्शा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादिया मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम,
0: जी
1: त्रिवेणी, छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा,
0: जी
1: प्रासंगिक कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?

0: सखी, हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
1: जी
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप गुणों की आरती, वाणी में ममता आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002462, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने

के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूं, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी।

उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी

पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

मिनटों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF अनिभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पूर्णपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, बरवाली, बरडांड, दांती ढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंता डांड, परसा डांड, पेटा, सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी

0: मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ अनुभाग सरगुजा। शाम के 5:05 हुए हैं श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए मोहब्बते फिल्म से। आवाजें दी हैं इस गीत में लता मंगेशकर, उदित नारायण, उद्भव और साथियों ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है जतिन ललित का।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

मोहब्बतें फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की थी। आनंद बख्शी की रचना, जतिन ललित का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं हर दिल जो प्यार करेगा। इस फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा और अनु मलिक के संगीत से सजा ये गीत।

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से, और अब लीजिए सुनिए कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं लकी अली की और इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से

0: संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और अब लीजिए सुनिए विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में बाजीगर फिल्म का ये गीत। शब्द रचना गौहर कानपुरी की है और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

बाजीगर फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाजें विनोद राठौर और अलका याग्निक की थी। गौहर कानपुरी की शब्द रचना, संगीत दिया था अनु मलिक ने। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। श्रोताओं, ये धरती केवल मिट्टी, पहाड़, नदियों और जंगलों का नाम नहीं है, यह अनगिनत जीवों, रंगों, भाषाओं, संस्कृतियों और प्राकृतिक संपदाओं का अद्भुत संगम है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं गहरे गहरे जंगल, कहीं कलकल बहती नदियां तो कहीं अथाह समुद्र। धरती की यही विविधता इसे इतना सुंदर और जीवंत बनाती है, लेकिन आज यही विविधता कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये सभी हमारी धरतियों के संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ना लें, बल्कि उसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी हम समझें। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धरती की विविधता हमारी जिम्मेदारी पर। हम जानेंगे कि प्राकृतिक की विविधता हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, इसे बचाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसे धरती छोड़कर जाना चाहते हैं। श्रोताओं, हमारी धरती पर लाखों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसे ही जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। यह विविधता केवल प्राकृतिक की सुंदरता नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित बनाए रखती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां पानी देती हैं, मिट्टी अन्न उगाती हैं और जंगल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अगर प्रकृति का यह संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सीधे मानव जीवन पर पड़ता है। इसलिए धरती की विविधता को बचाना केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की भी आवश्यकता है। एक समय था जब इंसान प्रकृति के बेहद करीब था। लोग पेड़ों, नदियों और जंगलों को पूजते थे और उन्हें जीवन का आधार मानते थे, लेकिन आधुनिकता और विकास की दौड़ में हम कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर चले गए। हमने जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम आज बढ़ते तापमान, सूखे, बाढ़ और प्रदूषण के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। प्रकृति हमें हमेशा देती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। साथियों, आपको प्रकृति और पर्यावरण के विषय में और जानकारी देंगे, साथ ही आपको हमारा आज के कार्यक्रम का क्रम भी सुनवाएंगे। पर अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के पहले गाने का, जिसे गाया है आतिफ असलम ने, संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने, शब्द दिए हैं इरशाद कामिल ने और फिल्म है टाइगर जिंदा है। लीजिए, सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: साथियों, अब वक्त हो चला है आपको हमारे आज के क्रम मेरी बारी की तरफ लेके जाने का, जहां हमारी बात हुई है राज वर्मा जी से, जिन्होंने पहली बार में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक को हासिल किया। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार और उनकी मेहनत की कहानी कि कैसे उन्होंने ये हासिल किया। हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच अभिजीत जी।
0: आप पहले हमारे श्रोता साथियों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
1: श्योर। तो मेरा नाम राज वर्मा है और मैंने अपने लॉ की मास्टर्स, जो कि एलएलएम होती है, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में मैंने एलएलएम किया है डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम से। जब मैं एलएलएम कर रहा था उसी दौरान मैं साथ साथ नेट की पढ़ाई भी कर रहा था और मेरा नेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। अभी मैं दिल्ली बेस्ड एजुकेशन स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ जो अफोर्डेबल लीगल एजुकेशन देने का काम करता है।
0: जी राज, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने यूजीसी नेट की तैयारी कब और कैसे शुरू की?
1: जी, तो देखिए, मेरा शुरू से ही एम यही था कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है और उसके लिए मैं दो चीज के बारे में श्योर था कि मुझे मास्टर्स करनी है और साथ ही साथ मुझे नेट भी क्लियर आउट करना है। तो जैसे ही मेरा एलएलएम का बैच स्टार्ट हुआ अगस्त में, मैंने साथ ही साथ नेट की पढ़ाई भी स्टार्ट करी। तो मैंने दिसंबर 2024 में नेट अटेम्प्ट किया था पहला, जो कि मेरा क्वालिफाई भी हो गया था। तो मैंने प्रिपरेशन

0: स्टार्ट की थी अगस्त 2024 से।
1: आपका ये पहला अटेम्प्ट था और आपने इसमें सफलता पा भी ली, तो क्या आप हमेशा से आपका लक्ष्य यही था या आपका कोई ऐसा निर्णय जो अचानक से आपने लिया परीक्षा देने का?
0: देखिए, मैं एक बात ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत से मौके मिलते हैं ये समझने के लिए कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ मोड़ना चाहेंगे। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो लॉ में आपको 5 साल का मौका मिलता है आप जब बैचलर्स डिग्री कर रहे होते हैं
1: जी।
0: तो जब मैं थर्ड ईयर में था मुझे ऐसा लगता था मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूँ। जब मैं फोर्थ में था मुझे ये लगने लगा कि मैं अब लिटिगेशन यानी कि वकालत करना चाहता हूँ
1: जी।
0: जब तक मैं फिफ्थ ईयर पहुंचा मुझे लगा कि जो टीचिंग जॉब का रोल है या जो अकेडमिशियंस हैं यू नो जो काम करते हैं अकेडमिक्स में वो बहुत अच्छा ऐसा रास्ता है जो कि मुझे लगता है कि मुझे सूट कर रहा था। तो मेरी राह में जैसा कि मैंने देखा कि धीरे धीरे मुझमें डेवलपमेंट आए, ये कोई पहले से बचपन से सोचा हुआ गोल नहीं था मेरा, बट धीरे धीरे मैं कल्टिवेट हुआ हूँ इस गोल की तरफ पे। इसी को समझते हुए फिफ्थ ईयर में मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अकेडमिक्स में जाना है। उसके लिए अगेन दो चीज मैंने श्योर की कि मैं एक तो क्लैट क्रैक करूं और दूसरा नेट क्रैक करूं
1: जी। राज, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका जो तैयारी था वो फिफ्थ ईयर से स्टार्ट हो गया था, पहले आपने क्लैट पीजी क्लियर किया उसके बाद फिर आपने नेट की ओर आगे अपना करियर देखा, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: जी, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे पिताजी हैं वो भी खुद वकील हैं और वो बिलासपुर में प्रैक्टिस करते हैं। बचपन से मैंने उन्हें वकालत में काम करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी रुझान वकालत की तरफ था। जब मैं वकालत में एंटर किया 5 ईयर कोर्स में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वकालत की पढ़ाई करके आप सिर्फ वकील जरूरी नहीं है, वकालत आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। एंड कहीं ना कहीं उन 5 सालों में मैंने वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का ट्राई किया एंड मुझे ये रियलाइज हुआ खासकर अपने टीचर्स को देखते हुए कि जो एक अकेडमिशियन की लाइफ होती है प्रोफेसर की लाइफ होती है वो इतना पावर रखती है कि वो एक जनरेशन का मल्टीपल जनरेशन को यू नो इन्फ्लुएंस करे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक जो अच्छा टीचर होगा वो कहीं ना कहीं 10 जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इट इज अप टू हिम कि वो एक जनरेशन को अपने तरीके से मोल्ड कर ले, तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा।
1: राज, जैसे ही आपने परीक्षा पास की यूजीसी नेट की, तो सबसे पहले आपके मन में क्या भाव आया? आपके परिवार और शिक्षकों की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही आपका रिजल्ट जानने के बाद?
0: प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी थी मेरे घर वालों की भी एंड मेरे भी कुछ शिक्षक मेंटर्स रहे हैं मेरे जिन्होंने स्पेसिफिकली हेल्प आउट किया है मुझे क्लैट की जर्नी में एंड नेट की जर्नी में भी। तो मैंने सबसे पहले अपने शिक्षकों को ही कॉल किया था उस बारे में बताने के लिए, तो सबकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, सबने बहुत ज्यादा बधाइयां दी एंड जेन्युइनली खुद में भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि हाँ मैं भी उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूँ।
1: जी, जैसे कि यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान आपने कौन कौन सी अपने लिए रणनीति अपनाई, आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज थी या कोई एक ऐसा टाइम टेबल जो आपने अपने लिए बनाया और वो आपको काफी हेल्पफुल हो गया?
0: यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क के बीच बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले स्मार्ट वर्क वहां पर लगेगा कि आपको समझना है कि आप सिलेबस को कैसे क्या अप्रोच रखें पढ़ाई करने के लिए एंड क्या क्या स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या क्या बुक्स यूज करें, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज आप यूज करें। तो वहां पर पहले आपको स्मार्ट वर्क दिखाना होगा, आप अपनी स्कोप को लिमिट करें कि आपको हाँ ये चीजें पढ़नी है, आपको दुनिया भर की सारी चीजें नहीं पढ़नी है। तो एक स्कोप लिमिट करना इज द स्मार्ट वर्क जो मैंने फॉलो किया था। वहीं अगर हार्ड वर्क की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं अगर आप नेट दे रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि मास्टर्स करते हुए नेट देते हैं, तो उनका जो मेन दिक्कत होता है वो ये होता है कि उनको समझ नहीं आता कि मास्टर्स की पढ़ाई के साथ नेट की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो वो चीज मैंने ये की थी कंसिस्टेंसी बना के कि भले ही मुझे दिन में बहुत कम टाइम मिल रहा है फिर भी मैं कहीं ना कहीं से 1 घंटे निकाल के जरूर पढ़ लेता था, मिनिमम 1 घंटा हर दिन, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ मेरी नेट की पढ़ाई कहीं खो ना जाए। तो जो सबसे मेजर चीज थी वो यही थी कि मैं कंसिस्टेंसी बना के चल रहा था। तो मैं बाकी लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क को साइड बाय साइड लेके चले एंड दूसरी चीज ये कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, मास्टर्स की पढ़ाई को आप ओवर शैडो मत होने दें, आप नेट की पढ़ाई भी साइड बाय साइड करते रहें।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहें, भले टाइम टेबल फॉलो हो ना हो बट एक जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए, तो उससे एग्जाम क्रैक करने के लिए बेनिफिशियल हो जाता है वो।
0: मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल भी जरूरी है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं साइड बाय साइड किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टाइम टेबल पे यू नो एकदम स्ट्रिक्टली यू नो अड़े रहना बहुत ज्यादा टफ टास्क हो जाता है। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आप टाइम टेबल बनाए और उस पर स्टिक करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कंसिस्टेंट होने की आदत डालिए कि आप एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ पाए, भले ही टाइम टेबल नहीं आप फॉलो कर पा रहे हैं लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए।
1: राज, जैसा कि मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना है कि जो नेट का सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा बहुत वास्ट होता है, तो आपने उसे कैसे मैनेज किया था?
0: इसमें आपको एक

0: तरीका था जो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कन्वेंशनल है, बट ये तरीका था जो मैंने फॉलो किया था
1: जी।
0: तो नेट में आपको दो पेपर्स होते हैं बेसिकली, पेपर वन और पेपर वन कॉमन रहता है, हर सब्जेक्ट वाले पेपर वन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं
1: जी।
0: पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे मैंने लॉ की है तो मेरा पेपर टू भी लॉ वाला ही था।
1: ओके,
0: तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की थी कि अगर मैंने 5 साल लॉ पढ़ी है तो पेपर टू में कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ चीज मैंने गो थ्रू करके रखी हुई है अपने 5 साल के कोर्स में, वही जो पेपर वन में टॉपिक्स थे वो मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे। तो यहाँ पर मैनेज करने जो था, मैंने बेसिकली ज्यादा प्रेफरेंस दिया था पेपर वन के सफाई, बिकॉज वही जो चीज है जो मैंने कभी अपने जीवन में देखी भी नहीं थी, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट नया था मेरे लिए। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने पहला प्रेफरेंस दिया था पेपर वन के सब्जेक्ट्स को, ताकि मुझे कुछ तो अंदाजा हो जाए उनके बारे में, क्योंकि भले ही अगर आप पूरा टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और एंड आपका नेट पेपर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको एडजस्ट करना है, तो आपको एडजस्टमेंट पेपर टू में दिखाना है कि आप पेपर टू के एक दो चैप्टर्स छोड़ दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पेपर टू आपने ऑलरेडी अपने बैचलर्स में पढ़ा ही होगा, लेकिन पेपर वन के कोई भी चैप्टर्स आपने बैचलर्स में कहीं नहीं पढ़े होंगे, राइट? एंड यही डिफरेंस हो जाता है आपका नेट क्रैक होने में या नेट क्रैक न होने में, क्योंकि ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो पेपर टू पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये रहता है ये चीजें ईजी है हमारे लिए पढ़ने में, हम इन्हें और अच्छे से पढ़ ले, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा 100 questions अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि यू नो टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होते हैं
1: जी,
0: लेकिन ज्यादातर उनमें से भी वो रॉन्ग ही चले जाएंगे। अगर आप 50 questions जो पेपर वन से आते हैं आप उसको एंटायरली छोड़ेंगे, तो आप कहीं से नेट क्रैक नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, आपको पहला फोकस पेपर वन को करना है, क्योंकि आप पूरी तरह से उससे अनभिज्ञ रहते हैं, पेपर टू कहीं ना कहीं आपको आ ही जाता है।
1: राज, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज या जो बुक्स अच्छे ऑथर्स की हो जिन पे आपने सबसे ज्यादा रिलाय किया था अपने एग्जाम के टाइम पे, अगर आपको पता हो पेपर वन के हिसाब से स्पेशली, और आप हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहें?
0: वैसे तो मैंने नेट क्रैक करने के लिए पूरी तरह से सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी, तो आई थिंक मैं श्रोतागणों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ इस बारे में कि मैंने लॉ के लिए तो एटलीस्ट पेपर टू की जब बात करते हैं तो मैंने 2 books रेफर की थी, एक यूजीसी नेट बाय राशि गुप्ता एंड लॉ बाय अरिहंत, बोथ ऑफ दीज बुक नेट के लिए है स्पेसिफिकली। वहीं पेपर वन के लिए जो बेस्ट बुक है दैट वो होगी KVS मदन की पेपर वन फॉर यूजीसी नेट, वो बुक बहुत थरो है, उसमें पेपर वन के 10 chapters बहुत डिटेल में कवर्ड है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे उसमें, एंड उसके अलावा आपको सजेस्टेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे मल्टीपल चॉइस के लिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे को माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका लेवल भी थोड़ा इजी भी है, मतलब इजी क्वेश्चंस भी हैं उसमें टफ क्वेश्चंस भी हैं, तो स्टार्टर्स के लिए आप इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, आप धीरे धीरे अपना लेवल इंप्रूव करेंगे तो आप टफ क्वेश्चंस की तरफ भी जा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा मौका देता है कि आप अपने लेवल को भी बढ़ाएं। तो KVS मदन फॉर पेपर वन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक है।
1: तो तैयारी के दौरान जैसे हम कभी कुछ पढ़ते हैं या फिर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते, तो उस समय ना कई सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं हमारी जिंदगी में, तो आपके अगर कोई जिंदगी में ऐसी कोई चुनौती आई हो जिससे आपने ओवरकम किया हो तो वो आप अगर साझा करना चाहें?
0: अगर मैं सोचूं इस बारे में तो ऐसी कोई चुनौती मुझे ध्यान नहीं आ रही है, एंड अगर मैं इसके बारे में और सोचूं तो मुझे समझ आता है कि शायद यही एक रीजन था जिस वजह से मैंने नेट निकल गया, क्योंकि 5th ईयर में पढ़ते हुए क्लैट निकालते हुए फिर NLU में पढ़ते हुए मास्टर्स करते हुए उस नेट निकाला मैंने, सब चीज स्मूथ गई है काफी, मे बी इसलिए मेरा नेट निकल गया। यहाँ पर एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मेरी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी थी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी जब मैंने नेट का प्रिपेयर कर रहा था, तो ये चीज मैं श्रोतागणों को से कहना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें।
1: जैसा कि आपने बताया कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, बट मेंटल हेल्थ के साथ साथ राज मेरे ख्याल से जो आसपास डिस्ट्रैक्शन है हमारे एज एन स्टूडेंट, वो भी बहुत जरूरी है कि हम उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया हो गया, या जैसे आपने बताया कि जो भी पर्सन यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहा होगा वो जनरली कॉलेज स्टूडेंट होगा, मास्टर्स पढ़ रहा होगा, तो वो थक भी जाएगा क्लासेस से अपने, या फिर एक पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं उससे भी वो डील कर रहा होगा, तो फिर हम इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटें या फिर इससे दूर कैसे रहें?
0: ओके, आपने यहाँ पर 2-3 problems गिनाई है, तो मैं उसको एक एक करके कट डाउन करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। पहली बात जो आपने कही कि इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है, राइट? तो इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना रूटीन बहुत अच्छा रखें, आप सुबह जल्दी उठें, आप रात को जल्दी सोएं, आप बीच में अपने सारे काम टाइम पे करें, आप कॉलेज टाइम पे जाएं, कॉलेज के पढ़ाई के लिए टाइम अलग से निकाले और आप नेट की पढ़ाई के लिए भी टाइम अलग से निकाले। मैं समझता हूँ मैं भी थक जाता था वहाँ पे, मेरे से भी हमेशा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था जो मैंने बना के रखा है। लेकिन अगेन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार फोकस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो है कंसिस्टेंसी। भले आप एक घंटे के लिए पढ़े नहीं हो पा रहा, आप आधे घंटे के लिए पढ़े नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट बुक को सामने खोल कर बैठ जाए, कम से कम आदत डलेगी वहाँ पे, तो आप नेट क्रैक करने के एक कदम

पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप थकान की वजह से आप कम्प्लीटली प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं तो वहां पर गलत हो जाता है। वहां पर एक आदत जो आप बना रहे होते हैं वो ट्रेक हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारा मन फिर इधर उधर डगमगाने लग जाता है। दूसरी बात आपने जो कही पीयर प्रेशर वाली बात, तो अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड में इंसानों में समझदारी आ जाती है कि कौन सा इंसान कौन सा पर्सन मेरे लिए सही है, किसकी संगत अच्छी है किसकी संगत बुरी है। मैं पर इंसान के बुरे भले की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं संगत की बात कर रहा हूँ। अगर आप नेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एकेडमिक्स में जाना

0: मैंने ये नहीं कहा कि बंद कर देना, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आप नेट की पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपको सर्कल भी ऐसा रखना है कि जो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा फटीग्ड हो जाएंगे या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा यू नो मेंटली स्ट्रेस हो सकते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप कहीं ना कहीं से थोड़ा वेंट करें, राइट, अपने मेंटल प्रेशर को कम करने का ट्राई करें। तो यहाँ पर सोशल मीडिया एक अच्छा टूल हो सकता है। आप पेरेंट्स से, अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम करता है सोशल मीडिया। लेकिन अगेन, जैसा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि अति सब जगह वर्जित है, सोशल मीडिया को भी एक हद तक यूज करना चाहिए।
1: लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ राज, कि अगर एक लाइन में आप अपनी सफलता का राज अगर बता पाए तो आप क्या कहना चाहेंगे उस लाइन में?
0: इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मेरी फेवरेट पोएम है जिसका टाइटल है इनविक्टस एंड उसके राइटर है विलियम अर्नस्ट हेनली। एंड इस पोएम की लास्ट दो जो लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट की हैं मेरी पूरी जिंदगी के दौरान। वो लाइंस हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। सो मुझे जो ये लाइन इंस्पायर करती है वो बेसिकली ये कहती है कि मैं अपनी लाइफ का, अपनी यू नो किस्मत का मास्टर खुद हूं, मैं अपनी आत्मा का कैप्टन खुद हूं, तो मेरी लाइफ उसी तरफ जाएगी जिस तरफ मैं उसे ले जाना चाहूंगा। तो इससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एकेडमिक्स के लिए जाना है तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। मैं अपनी लाइफ को उसी तरफ ले जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ, और वो अकेली जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। तो मैं कहीं ना कहीं इन लाइन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ एंड यही वो लाइन है जो मुझे इतना मोटिवेट की है अपनी लाइफ पे चार्ज लेने के लिए, अपनी लाइफ को यू नो बढ़ाने के लिए।
1: राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी अभिजीत जी, थैंक यू सो मच।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम मेरी बारी में राज वर्मा जी से हुई बातचीत। साथियों, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: साथियों, वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम में एक और गाने का, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने, संगीत से सजाया है अंकित तिवारी ने और शब्द दिए हैं मनोज मुंतशिर ने। ये गाना है फिल्म तुम बिन टू से। लीजिए, सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

श्रोताओं, आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। पेड़ों की कटाई से वर्षा का संतुलन बिगड़ता है, नदियों का प्रदूषण जल संकट पैदा करता है, प्लास्टिक और धुआं हवा को जहरीला बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं का असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, कृषि और जीवन शैली पर भी पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आम नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं। दरअसल बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है मित्रों। अगर हम पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, बिजली की बचत करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, तो यह प्रकृति के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। साथ ही बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला भविष्य ही उनके हाथों में है। श्रोताओं, आज के युवा केवल तकनीकी और आधुनिकता की बात नहीं कर रहे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काफी जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्लास्टिक मुक्त अभियान और जल संरक्षण जैसे गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अगर युवा पीढ़ी जागरूक होगी तो निश्चित रूप से आने वाले कल अधिक सुरक्षित और हरा भरा होगा। इसी के साथ मैं अभिजीत सिंह आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम युवा जगत FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानकारी दे दें आपको आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आज शाम 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम में सुनिएगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से ली गई जानकारी। संचालक होंगे महंगू भैया। ग्राम सभा कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वनोपज आधारित आय। और रात 8:00 संजय वत्सल के गाए गैर फिल्मी गीत सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में। इस कार्यक्रम के बाद आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9:15 से रात 11:00 तक।

और अब आपको जानकारी दे दे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में। सुबह 10 हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम अमराई, इसमें हम लेकर आएंगे श्याम शनि साहू, लता वर्मा, ममता चंद्राकर, पुष्पलता कौशिक और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। खेती की बात सुनिएगा प्रातः 6:30 पर, कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय होगा टमाटर की उन्नत खेती, वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह छत्री का होगा। कार्यक्रम चिंतन का विषय होगा निस्वार्थ सेवा, आलेख होगा श्री भाव सिंह हिरवानी का। विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से श्रोता जुड़ेंगे सुबह 9:30 पर दिन के 11 बजे, दोपहर 12 से शाम 5 तक और रात 9:15 से रात 11 तक।

कल शाम 5 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सीएफएनए भाग सरगुजा। शाम 7:20 का समय होगा कार्यक्रम ग्राम सभा का। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मिलेट्स और मोटे अनाज का उत्पादन, सरल और स्वास्थ्यवर्धक भी। कार्यक्रम किसानवाड़ी प्रसारित होगा शाम 7:30 पर। कार्यक्रम में आज के बाद में हम चर्चा करेंगे पोषण वाटिका पर और भेंटवार्ता में सुनिएगा ग्रीष्मकालीन फसलों का उचित भंडारण। इस विषय पर डॉक्टर पंकज मिंज विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से ली गई बातचीत। भेंटकर्ता होंगे दशाखू भैया। रात 8 बजे प्रसारित होगा रेडियो रिपोर्ट रोजगार मेला पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम 6:10 होने को है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 ठिन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी

0: ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। राज्य सरकार ह खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे हे। और दुर्ग जिला में एक ठिन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झिन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले हे। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 23 मई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 जगामन में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मन ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। इही कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहार ले रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। रोजगार मेला में 257 युवा मन ला नियुक्ति पत्र दे जाही। इमा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम करही बाजार पहुंचीं। इस दौरान मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान करीं। संग्रह मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार ले भेंट करीं। उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच के मुख्यमंत्री धात्री महतारी मनल किट घलो प्रदान करीं। ए मौका में मुख्यमंत्री स्कूल मन के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाए समेत आने आने घोषणा करीं। एकर पहली मुख्यमंत्री काली सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारी मन के बैठका में पीए के पानी के समस्या और स्कूल परीक्षा परिणाम लेके नाराजगी जताईं। ओमन कोरिया जिला में खातु वितरण में गड़बड़ी आगू आए में सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्था आयुष प्रताप सिंह ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे के निर्देश दिन। इही बीच कोरिया जिला के जिल्दा समिति खड़गवा में खातु वितरण ले जुड़े गबन प्रकरण में दोषी मन के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाए में प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी ला घलो निलंबित कर दे गए है। राज्य सरकार खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे हे। ए पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी करे गए है। इन नंबर में आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितता के शिकायत सीधा दर्ज करा सकें। सूचना केंद्र के संचालन हरेक दिन बिहानिया 10 बजे ले संझा 5:30 बजे तक करे जाही। नीति आयोग डहा ले जारी देश के आकांक्षी ब्लॉक मन के चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिला के उसूर ब्लॉक सेंट्रल जोन में देश भर में दूसर स्थान हासिल करे है। आयोग स्वास्थ्य और सामाजिक विकास ले जुड़े कई ठिन संकेतक के आधार में मूल्यांकन करे रही जेमा उसूर ब्लॉक के प्रदर्शन उत्कृष्ट पाएगीज। ये उपलब्धि में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप जिला के नागरिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ला बधाई दिन है। सहकारिता विभाग के आयुक्त महादेव कावरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले विभागीय योजना और काम के समीक्षा बैठक लीन। सहकारिता आयुक्त श्री कावरे अधिकारी मल्ले कहिन कि किसान मल्ला बेरा में खातु उपलब्ध कराना शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। एकर बार ओमन जम्मो पैक्स समिति में पर्याप्त मात्रा में खातु के आगूले भंडारण सुनिश्चित करे बर कहिन। ओमन खातु के उपलब्धता और वितरण के नियमित रूप ले समीक्षा करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहाले प्रदेश के जम्मो डाकघर में अवैया 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाए जाही। इस दौरान कोनो भी नागरिक अपन नजदीकी डाकघर जाके या राज्य सरकार डहाले नियुक्त अधिकृत एजेंट के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या और कोनो योजना में निवेश कर सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपकी

0: मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कुती। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ए बखत बस्तर संभाग में नक्सलवाद के सिराय के बाद स्थानीय लोगन तक विकास के रोशनी पहुंचाए बर सरकार डहाले करेगे अभिनव पहल ऊपर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एका प्रसारण काली 23 मई के आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर डहाले काली बिहानिया वाकथन के आयोजन करे जाही। ए वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकथन के शुरुआत बिहनिया 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर ले होही। ए वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होवत लहुट के आकाशवाणी परिसर में सिराही। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के सुरता में करे जाते। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग डहाले पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण प्रचार प्रसार और रुचि जगाए के उद्देश्य ले आने आने कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 के आयोजन करे जाते। ये आयोजन 25 मई ले 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में करे जाही। शिविर में दो पाली में बिहानिया 7 बजे ले 10 बजे तक और संझा 5 बजे ले 8 बजे तक आने आने कला के प्रशिक्षण दे जाही। ज्यादा जानकारी पर प्रशिक्षु मन संस्कृति विभाग के वेबसाइट www.cgculture.in ला देख सकत हैं। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम अब बदल के राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय करे जाही। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग विश्वविद्यालय के नाम बदले के प्रस्ताव ला औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दे है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झीन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। शुरुआती जांच में पुलिस आशंका जताए है कि दंपत्ति है पहली दोनों लैका मन के हत्या करिस एकर बाद खुदे फांसी लगा के आत्महत्या कर लेन। पुलिस है मौका ले सुसाइड नोट बरामद करे है जेमा आर्थिक तंगी और पारिवारिक झगड़ा के जिक्र है। पुलिस मामला की जांच करत है। और अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में तापमान सामान्य ले ज्यादा दर्ज करे जाते। मौसम विभाग रायपुर समेत बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिला के कुछ एक जगह में लू चले के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान ले आवत गर्म हवा के स्थिति अवैया 3 दिन में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज करेगिस। अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग अपन जम्मू अनुविभागीय अधिकारी मंडल के प्रमुख अभियंता तक सबोला मुख्यालय में रहे के निर्देश दे है। निर्माणाधीन कार्य मन के गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करे काम के मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यालय तुरंत शुरू करे बर विभाग ए निर्देश जारी करे है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कोतिले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा खातिर अभ्यर्थी मल्ला 25 मई ले 30 जून तक आवेदन मंगाए गए हैं और महासमुंद जिला ले लगे बानवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में जंगली जानवर गौर के हमला में एक ग्रामीण के मौत हो गए है जबकि दूजन दूसर गंभीर रूप ले घायल हो गए है। बताया जाते है कि ग्रामीण जंगल के आने आने जगह तेंदुपत्ता संग्रहण करत रहें। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 तीन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र की स्थापना करे है और दुर्ग जिला में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओका दूझीन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

शाम के 6:20 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने। सुनने वाले सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए, आप सभी की पसंद पर मौसम फिल्म से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, गुलजार की रचना, मदन मोहन का संगीत और पसंद नरगोड़ा से आई है, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश। ये श्रोता मोहाली चंडीगढ़ से हैं, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। वीरमगाम राजकोट से पसंद रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता की आई है। और बिलाईगढ़ से हैं श्रोता खीकराम दिवांगन, रेणु रजनी, प्रियंका दिवांगन। डोंगरगांव से पसंद हमें ईमेल के जरिए भेजी है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का, तन्मय गजभिये ने। मजनू कटिल्ला से हैं श्रोता कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। और आप हैं सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोरम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन का मेल हम तक पहुंचा है। और मदनपुर से पसंद श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू की आई है। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन। और जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित, गर्व और हिमाक्ष। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे। बटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। और इसी गीत को सुनना चाहे तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी ने। दिल्ली से पसंद आई है तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन की। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और ये श्रोता है चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश और कालिंदरी लहरे। तेलंगाना मोहनगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। महसूल सीतामढ़ी बिहार से पसंद मुसर्रत जहां नाज, तलत फरहत, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज और इनके साथियों की। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म मौसम का ये गीत।

मौसम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थी, गुलजार की रचना, मदन मोहन का संगीत। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म निकाह से महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ों में हसन कमल का लिखा और रवि के संगीत से सजा ये फरमाइशी गीत। पसंद पटियाला से आई है, मुकेश बत्ता नीलम बत्ता की। जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, पीयूष कुमार और रोहित राज। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रितेश संघई का मेल हम तक पहुंचा है। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी। भाटापारा से पसंद आई है प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत, राघवेंद्र साहू की। और यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजनी और निवृत्ति आडुकार। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। धरदी सरगांव से हैं श्रोता चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत और कृष्टि पटवा। और इसी गीत को रायपुर से सुनना चाहा है नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार हैं। और वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से पसंद जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता की आई है। राजकोट से हैं श्रोता जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। और श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं श्रोता नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा का मेल आया है। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम की पसंद हम तक पहुंची है। और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानु प्रिया, माधुरी, किरण का मेल आया है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू और मयंक भाटिया। चिरमिरी कुरासिया कालेरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे। और ये मेल आया है निमानाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गहवाड़कर, टुकटुक, प्रिंस एकांत, सुमित

और ध्वनि कहमाड़कर। पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलीज डिकैस्ट्रो। तिलहारा से हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौदी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी का मेल आया है। करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप उगलानी और साथ में जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा का भी मेल आया है। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी देशमुख, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और ये श्रोता है दिल्ली से जिम्वकार, माहिर अजीम और नगमा अजीम। गंडे टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन का मेल आया है। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में फिल्म निकाह का ये गीत।

और अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म शर्मिली का ये गीत। स्वर दिया है किशोर कुमार ने, नीरज ने इस गीत को लिखा है और संगीत एचडी बर्मन का। पसंद कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह की आई है। गांधीबाग अकोला से है रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम सिन्हा और आदिबा कमेल। मलोट से रमेश कुमार जाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाझोरिया। दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत इशरत और मकार जहां। और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी। और इसी गीत को कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, रियांश कान्हा और साथ में है शनि और आदित्य देवांगन ने भी पसंद किया है। बुड़गहन से मेल आया है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति का। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल और साथ में गुरशब्द सिंह राहुल। और ये मेल हम तक पहुंचा है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। अड़ान नामघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। महलनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गहवाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश गहवाड़कर। पैठड़ से हैं सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। दतरंगी भाटापारा से पसंद आई है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा की। सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमस, रमेश कौर और मोहम्मद शदाब खत्री का मेल। पिपरिया से है कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया का मेल। लसुडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से पसंद गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी की आई है। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोदा और श्राव्य रामटेके ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और ये श्रोता बटैना पाटन से परमेश्वर साहू, राजपत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन और अब्दुल सलाम रायन। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। और नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू का मेल। भोपालगढ़ राजस्थान से पसंद धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार की। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का मेल। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। राजकोट से पसंद जूली जगदीश, प्रवीण और इनके साथियों की। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और साथ में नाजिया इब्राहिम। गुजरात से ये श्रोता हैं भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आशमा श्याम कुंवर। और लुत्रा खमरिया से पसंद नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज की आई है। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का मेल। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म शर्मिली का ये गीत।

0: शर्मीली फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में नीरज के बोल थे, एचडी बर्मन का संगीत। और इस गीत को हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया था और मेल भेजा था। लोहारेडीह जिला कवर्धा से पसंद आई थी अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी ललिमा, खुशांत और निशांत साहू की। गिरिडीह झारखंड से थे श्रोता मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन अहद, मिफरा नवाज और चाहत। और ये मेल पलारी से आया नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवांगन का। और लुतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका ने भी पसंद किया था शर्मिली फिल्म का ये गीत। डोंडी लोहारा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अल कबीर का मेल। सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, हबीब और इरफान मोहम्मद। बाग बहारा भदरसी से थे श्रोता पन्ना लाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन। और आप दिल्ली शहर से असमा परवीन, आमना वली भाई अंसारी। सावतपुर से पसंद हमारी इन श्रोताओं की ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। और ये था श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत। और जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी ने भी इसे पसंद किया था। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन का मेल। और सहारनपुर से पसंद आई थी सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंगी की। और अब इसी के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने से दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM एंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो।

0: करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके दो बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इस ऐप का शुभारंभ किया। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और

0: वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम करही बाजार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार से मुलाकात की। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने धात्री माताओं को किट भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सुव्यवस्थित रूप से जन जन तक पहुंचाना है।
1: आज सुशासन तिहार के अंतर्गत करही बाजार में समाधान शिविर में आए हैं। 45 डिग्री गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में समाधान शिविर में आए हैं। सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकिल की मांग की तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन तिहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जन सेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुंचे और पहुंच रहा है कि नहीं, ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है। और मैं बड़ा मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूँ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों में चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों डायल 112 फेस 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।
2: 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। इसमें एक जवान भी एक पुलिस का इसमें तैनात होगा। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक, पहले 16 जिलों में था, ये 33 जिलों में अब आने वाला है। आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद स्थानीय लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 23 मई को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 मई से 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। शिविर में दो पाली में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी

अंबिकापुर द्वारा कल सुबह वाकथन का आयोजन किया जाएगा। इस वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकथन की शुरुआत सुबह 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर से होगी। यह वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में सम्पन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का

0: यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके दो बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि दंपत्ति ने पहले दोनों बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद का जिक्र है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिलों के कुछ स्थानों में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित नंदन वन जू और जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर रवि साहू की 7,66,00,000 रुपये कीमत की 16 संपत्ति को सीज कर दिया है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में तेंदुपत्ता से भरे एक ट्रक में अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 25 मई से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और महासमुंद जिले से लगे बारनवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में वन्य प्राणी गौर के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण जंगल के अलग अलग क्षेत्रों से तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
2: प्रादेशिक समाचार हिंदी में अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में।

कृपया श्रोताओं, कार्यक्रम महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं फोन करें, गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है और इस माह इसका प्रसारण 26 मई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसके रिकॉर्डिंग 25 मई 2026 सोमवार प्रातः 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी और आपसे चर्चा का विषय होगा नई पीढ़ी की माँ। साथ ही आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, यारियां, चक दे इंडिया और रंग दे बसंती। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752 हमारा एसटीडी कोड और नंबर है 26692310026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। शाम के 7:00 हैं श्रोताओं और अब लीजिए सुनिए ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने लेकर हाजिर है आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू। सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए, ब्रह्मचारी फिल्म से आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, पसंद बरेली कैंट चनहटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार रागनी और मुस्कान की आई है। सरगांव से हैं श्रोता राजेश वर्मा हीरोमन और साथ में पल्लवी राजेश्वरी वर्मा। खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घुरनी करिश्मा सुमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामनी ऐश्वर्या पैकरा। भिलाई 314 से नौशाद अहमद सिद्दीकी हमीदून जिशान सहना नवाज अहमद सिद्दीकी। बोरसना नैला से है पसंद प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू की। बिलासपुर से पसंद छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता रज्जन साहू हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी की आई है। और इसी गीत को भाटापारा से सुनना चाहे दानसी रावत दानू पद्मनी नीरज शुभम और सौरभ रावत ने। ग्वालियर से पसंद सुरेश खुराना किरण लव्या आरव और साथ में एस के पप्पी की। छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अहमद भाई फुलवाले दुखना रानी सदफ आरजू जू इकबाल इमरान अहमद आमना नसरीन आसमा परी राबिया मतानशा आशु और इनके साथी। दिल्ली से प्रमीला हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से पसंद वलीउल्लाह अंसारी सोनम वली और आसमा वली की आई है। और ये मेल बरका काना से अफजाल ताज शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम निपी सहनी मोहम्मद अफजल मलिक की। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं श्रोता शाहजी बोट के नंदा हनुमान बोट के। पलेरा से पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ये श्रोता बजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। लक्षनपुर से हैं विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां का मेल। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम थांदी वामिका और वाणी थांदी। फिल्म सिटी मुंबई से पसंद अदीबनाज फातिमा नसरीन आलिया और शबा अंसारी की आई है। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा सुलोचना और चेतन भगत का मेल। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया नमन अपार ढींगिया। और पलारी से पसंद आई है प्रकाश वर्मा निखिल यशस्वी अन्नपूर्णा वर्मा की। और इसी गीत को पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर पांडे ने सुनना चाहा है। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार प्रमोद और पुष्पेंद्र सिंह। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत।

ब्रह्मचारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की थी। और अब लीजिए सुनिए फिल्म हेलो ब्रदर का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, जलीस शेरवानी के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। पसंद आई है इन श्रोताओं की। जमशेदपुर से है हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल सोनू, पप्पी भाटिया। राजकोट से राजेश, कृष्णा स्वाति, ख्याति कुमारी। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार का मेल। लगहान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार। इंदौर मध्य प्रदेश से पसंद, नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक। साथ में है परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी और साथ में मालती चौधरी। भाटापारा से पसंद बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चौराम वर्मा, सूरज पारिकर, नारायण यदु और भुवन कामरी की आई है। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नहवाकर, निर्मला, विशाल नहवाकर। गांव हीरावली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और ये मेल हम तक पहुंचा है रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र, जोई यामनी, उमा तिवारी की। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। और मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। तो लीजिए सुनिए हेलो ब्रदर फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत, उमराव जान फिल्म से आशा भोसले की आवाज में शहरयार के बोल खयाम का संगीत। पसंद धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू की। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहना नवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और साथ में है अबान अब्बासी। खमरिया से पसंद साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार की। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह। पानीपत से पसंद नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा की। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर उमराव जान फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म उमराव जान का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। शहरयार ने इसे लिखा था, खय्याम का संगीत, और इस गीत को हमारे और भी श्रोताओं ने पसंद किया। अकलतरा कटघरी से ईमेल आया, नंदनी चांदनी ममता फुग्गी खुशी किरण करण अर्जुन गप्पी डुगू बंदी आरती भारती नोना और साथ में अंकिता और देवांश का। रोहांसी से पसंद डगेश्वर राम साहू घनश्याम नूतन गौरव अलका और जानवी साहू की। दतरंगी से पसंद आई थी विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु की। और अब इसी गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू को। शाम के 7:20 हुए हैं श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

बार संगी हुआ देखा था गर्मी ला का आगे उगला थे आज तो रात दिन भर न चैन न रात भर चैन कुह कुही हर मरो जियोले भर गए कारण जाना था ना। अरे भाई चारों कति के जंगल पेड़ पौधा के कटाई जब लकार दे हाँ निर्मा मूल सुनना हो गए रद्दा अब तो चिड़ई चुरगुन दूर के बातें मन खे के छैया नहीं है खड़े हो के पूरा रोड यहाँ वहाँ ले जाहा चाहे कोनो कोती चल देवा सुनना कोनो मेर गाड़ी खड़बो खड़े करबो छैया रही गई है ना तो ना तो थीर बर जगह मिला है और ना खड़े हुए बर जगह मिला है कतका दुख के बात है ना भाई का कथे जाना था। घना जंगल के हरियर छैया घना जंगल के हरियर छैया मऊहा के मीठा खुशबू और बिहान के सुरता जगावत चिड़ई चुरगुन की बोली चेत करके सुनिया मैं का कहत हूँ तिला ऐसे आप पहुँच जाओ अपन रास्ता में हमारा आकाशवाणी के परिसर में आहाओ और सुनिया कैसन सुंदर कोयली कुकत रथे चार मुड़ा ले का मीठा आवाज में ये आए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान जौन हर अब लगभग नंदावा थे तो जी हाँ गांव जंगल और जिंदगी के बात होते कहाँ हमार छत्तीसगढ़ में गांव जंगल और जिंदगी के बात होते अपन माटी के बोली में कथे संगी हुआ जंगल हर हमार दाई आए और सुख दुख के संगवारी आए जंगल हर हमार दाई आए सुख दुख के संगवारी आए मऊहा तेंदू चार उहर्रा मऊहा तेंदू चार उहर्रा गांव के खुशहाली के फुलवारी आए संगी हो जंगल है सिर्फ लकड़ी और पाना भर नहीं देवाए एहर हजारों लाखों परिवार मन के रोजी रोटी और जिंदगी के सहारा आए। तो आज हम बात करबो वनोपज है ना वन जौन जंगल है ओमा का संपत्ति होते का संपत्ति के खान है जो प्रकृति के और प्रकृति के खजाना और ओकर से हमला का आय होते यानी आमदनी कैसे होते तो भाई आज ऐ विषय में चर्चा लेके आए हैं विषय है वनोपज आधारित आय और एक बार बहुत सुघर और लाभकारी जानकारी आपन बर हम सकेल के अपन मोटरी गठरी में गठिया के और सुघर सुघर जानकारी लेके आए हैं पर पहले सुनबो संदेशा

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनवैया जम्मो रेडियो श्रोता संगवारी मन के स्वागत है। झोंकव अपन कजरी दीदी के मैं आप रीत भरे राम राम जय जोहार।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संगी हुआ संदेशा सुनने के पहले बात चलत रही से वनोपज आधारित आय ए विषय में गोठ बात करबो न कहके ता पहली बता दिन वनोपज का होते है ना। वन यानी जंगल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जम्मो उत्पादन एला हमन वनोपज कथन। वन में जो उपज थे और एला मुख्य रूप से दो भाग में हमन बांटे हन मुख्य वनोपज और लघु और गौण वनोपज। तो मुख्य वनोपज में का थे सबसे पहले तो आते हमन के लकड़ी उहु इमरती लकड़ी। इमरती लकड़ी में शीशम सागौन साल साजा चंदन है कि नहीं है जम्मो लकड़ी होते। और ये लकड़ी मन तो लकड़ी नो है हर हर सोन के भी से बढ़ के भी खदान है कई दवा। कारण पहली तो ये लकड़ी मन में घून नहीं लगाए बहुत बड़े एकर विशेषता है। दूसर होते एला अतका नरम होते कि सुंदर सुंदर कसीदाकारी करके रंग रंग के ओला बना करके बढ़िया बढ़िया जिनिस आप बनवा सका था। जैसे सोफा हो गए कुछ सजावट के सामान हो गए दरवाजा हो गए आजकल शो केस बनाते हैं इस टाइप के बढ़िया से बढ़िया सुंदर चीज बना के आप बाजार में ओला बेच करके और अधिक से अधिक लाभ कमा सका था। अब्बड़ महंगी भी मिलते लकड़ी हर तो एला तो सहेज के और संभाल के बोथे भी और रखते भी तो सबसे बड़े खजाना आए ना भाई हमर वन के। और दूसर होते जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी यानी ईंधन जेमा हम भोजन पकाथन और ये तो जरूरी चे कह दे अरे आगे नहीं बारबो तो चूरही कैसे चूरही नहीं तो खाबो कैसे।

से खाबो नहीं तो जीबो कैसे, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो गए ईंधन लकड़ी। दूसर होते लघु या गौण वनोपज, एमा लकड़ी के अलावा ऐसे सब जिनिस जो जंगल में मिलते और एकर से आदिवासी या जंगल में रहैया ग्रामीण भाई मन के मुख्य आजीविका के साधन होते। कैसे भाई जेमा होते, पहली तो खाए पिए के चीज होते, जैसे शहद, कंद मूल फल है ना, कांदा, किसम किसम के कांदा हमारे जंगल में रही थे, और जंगली फल जेमा चार होते, तेंदू होते, पुटू होते, आजकल कतका महंगी मिलते पुटू हर, आजकल तो पुटू के स्पेशल खेती भी करते हैं, वाला मशरूम भी कथन हमन, ये सब जिनिस हमारे जंगल के वनोपज समझा और बहुत बड़े खजाना है। दूसर होते औषधि या जरा दवाई कही थन, ओमा तो अनन्य किस्म के जड़ी बूटी होते जौना जंगल में ही जमीन के नीचे में या जंगल में मिलते, ऐसा ऐसा जड़ी बूटी है ओहर जेला संजीवनी बूटी भी कहे जाते समझा। और आगे मिलते आंवला, हर्रा, बहेरा, अश्वगंधा, मतलब जतका हमार स्वास्थ्य वर्धक अमूल्य धन है वो सब चीज है जंगल में पाए जाते। ओकर बाद होते व्यावसायिक उत्पाद, व्यावसायिक उत्पाद में तेंदू पत्ता हो गए, मऊहा हो गए, बांस हो गए, बेत हो गए, गोंद, लाख, कोकून, कतका कन हो गए देखा, ये सब चीज है ना जंगल के धरोहर है समझा, वो सब उन्हें मिलते। तो देखा ना सब खजाना जो स्वास्थ्य पर लाभदायक है जंगली मच्छी पे रहते, एक बार तो जंगल सिर्फ हरियर भर नहीं है, ये हमारे जीवन, रोजगार और संस्कृति के आधार भी आए। जंगल के हजारों परिवार जो वहां मिलने वाले वनोपज ऊपर ही निर्भर रहे थे, जैसे कि मऊहा के फूल के लड्डू, अचार बीज के चिरौंजी, तेंदू पत्ता ला बेच के संगी फिर आमदनी बढ़ते और घर चलते। अब तो सरकार घलो वनोपज खरीदी केंद्र बना के गांव के जो जंगली जंगल अंदर जो गांव बस्ती रहते थे ओकर तीर तखार मा उन लोगन मन बर सही दाम देवत है। और महिला समूह मन मऊहा, अमली, आंवला, ये सब के किसिम किसिम के अचार हो गए, कैंडी हो गए, जैम जेली हो गए, और तो और सौंदर्य प्रसाधन के भी रंग रंग के चीज बनावत है, कई प्रकार के चीज स्क्रब कथे, फेस मास्क काय काय कथे सब बनाते है। और ये सब सोझे नहीं बनावत है, मन बकायदा ट्रेनिंग लेके बनावत है और बाजार में बेच करके अच्छा से अच्छा आमदनी भी पावत है, जेकर से लाभ भी बहुत है। और महिला मन शिक्षित और आत्मनिर्भर भी बना थे। तो संगी हुआ सब ले जरूरी तो जंगल की रक्षा हुआ, अगर जंगल बच ही तभी तो वनोपज मिल ही और आमदनी बढ़ी। तो चलावा आज संकल्प करीन, पेड़ लगाबो, जंगल बचाबो, काबर के जंगल ला सबले पहले तो आग ले बचाबो और तभे वनोपज ले बढ़ी कमाई और गांव गांव खुशहाली लाबो। तो चलाओ संगवारी हुआ जंगल के मयाकरण, वनोपज के सही उपयोग करन और अपन गांव ला आत्मनिर्भर बनावन। यही संदेश के साथ साथ कार्यक्रम में आगू कति बढ़ीन, देखा तो अतका सुघर गीत घर अगोरा थे जिला स्वर दे साधराम मरावी जीवन।

0: देखा संगी हुआ, बखरी के नार मिर्चा लईका लरुआ थे औ ए सुघर गीत लस्वर धेरिन हे साध राम मरावी औखर संगी मन। देखा तो रेंगत रेंगत हमन गीत के विधुन म गोठ के विधुन म कदुरा गयन औ आए हन संगी हुआ रास्ता म कतका सुघर गमकत हे चारों मुड़ा हा खुशबू ही अतका बढ़िया है कि अपने आप खींचे चले हाथ है मन खेती। हाँ देखाओ कका कतका ठोका चिन्हीन है एकरे बर तो तजुर्बा कार कैसन है नहीं कहे। देखा अपन तजुर्बा में बता दिन हमार कका हर ए हर तो प्राकृतिक पद्धति के किए गए खेती के खुशबू ए कहत है। संगी हुआ जब खेत में रासायनिक दवाई के जगह में जीवामृत के खुशबू आते ना तब माटी पर फिर से जैसे केचुआ भर जाते तो धरती दाई हर मुस्काते औ अन्न भी हर अमृत बन जाते। प्राकृतिक खेती किसान ला कम लागत शुद्ध भोजन स्वास्थ्य पर्यावरण की तरफ ले जाते और सबले बड़े बात धरती दाई के उर्वरता बढ़ाते। ता हमु मन चलिन ये कहत कहत माटी बोले प्यार से मत जहर अब डाल अब प्रकृति दाई के गोदी मा हरियाली के भर खुशहाल। तो चली आज कार्यक्रम में आगू कति हा भाई आज ए दिन शुक्रवार औ आज पारी रथे हमार संगवारी मल्ला गोरा रथे फोन इन कार्यक्रम की। ता आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय हवे प्राकृतिक खेती का महत्व। ये विषय के विशेषज्ञ हवे डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी जी जो उन्हें विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर और इकर सफर संचालन हमर मंगू भैया मन करत है। ता आवाज सुनिन आज के फोन इन कार्यक्रम।
1: फोन इन कार्यक्रम में जम्मू संगवारी मन के स्वागत हवे। आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय हवे प्राकृतिक खेती के महत्व। ये विषय संबंधी जो भी फोन आई ओकर जवाब दे खातिर समाधान करे खातिर आज हमार स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी मन जौन हवे विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में। तो सबले पहले तो स्वागत करे थन डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे। आप मन ला राम राम।
2: राम राम भैया।
1: ये पहली कॉलर हमारे जुड़त हवे। हाँ कौन बोला था कहाँ बोला था जी?
3: हाँ भैया महंगू भैया मैं नगर पंचायत मल्हाल जदुनंदन प्रसाद वर्मा बोला था।
1: जदुनंदन प्रसाद वर्मा जी आप मन के हमारे फोन इन कार्यक्रम में स्वागत हवे। आज के आपके प्रश्न का है कैसे का जानना चाहा था हमार?
3: सबसे पहले तो डॉक्टर कौशिक दीदी ला नमस्कार।
2: नमस्कार भैया।
3: मैं यही जानना चाहा था भैया जैसे हमन प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहता हूँ प्राकृतिक खेती के का लाभ है का महत्व है और प्राकृतिक खेती कैसे किए जाए।
1: शुरुआत तो बढ़िया करे है बोहनी अच्छा हो है। चला बताते हैं एक भाई।

0: कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
1: हाँ
0: प्राकृतिक खेती का अगर लाभ और फायदा बोलें तो फसलों का अच्छा उत्पादन होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, फसल
1: हाँ
0: उत्पादन की लागत में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी और भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी। उसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा पर्यावरण संरक्षण है। जो
1: हाँ
0: हम लगातार रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारे मिट्टी की उर्वरक शक्ति मतलब उस पर असर पड़ रहा है, तो उसको बचाने के लिए हमको प्राकृतिक खेती करना बहुत ज़रूरी है। और प्राकृतिक खेती करने से रोजगार का सृजन भी हो रहा है, हमारे किसान भाई जीवामृत बीजामृत नीमास्त्र बनाकर बेचने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे इस कार्य से हमारा जो पशुधन है उसका संरक्षण होगा, हमारे गाय का संरक्षण होगा, और जो हमारा जैविक कार्बन है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो ये हमारा
1: बढ़ोतरी
0: प्राकृतिक खेती का लाभ होगा।
1: होगी।
0: और प्राकृतिक खेती हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पर्यावरण और स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे सृष्टि के लिए भी हमको थोड़ा सा सोचना है, इसलिए हमको
1: हाँ
0: प्राकृतिक खेती करना है।
1: माने हमार जमीन ला बंजर होय से भी बचाना
0: हाओ
1: हो,
0: हाओ हाओ
1: एकर लिए संसाधन कहाँ कहाँ हो सकत है बहन जी?
0: एकर लिए आप मन के सबसे अच्छे संसाधन है हमारे देसी गाय, देसी गाय, देसी गाय का गौमूत्र, गोबर, गुड़ और दाल का आटा, इसका हम प्रयोग करेंगे और इसमें मिट्टी का प्रयोग करेंगे। हमारे खेत के आसपास जो हमारी प्रकृति है उसी से जुड़ी हुई चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, जो हमारी मिट्टी है उसका प्रयोग करेंगे, हमारे आसपास के पेड़ों का प्रयोग करेंगे, पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करेंगे, और हमारे आसपास जो हमारे पास संसाधन है, कम बजट के साधन, उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे।
2: वर्मा जी
1: हाँ भैया
2: कैसे
1: जी,
2: बढ़िया ले, समझ में आई कि नहीं?
1: हाँ समझ में आ गए भैया, और दीदी मन के सलाह हमेशा मिलत हवे, और आपके आकाशवाणी के भी आभार है, जेन डेरा बखत में बढ़िया वैज्ञानिक मन करा बात करा देता हो तो हम मन के समस्या हल हो जाते।
2: आप मन भी बढ़िया फोन ले जुड़े रहो, कार्यक्रम ले जुड़े रहो, सुनथो और गुण के जरूर हमार अमल करथो,
0: और नहीं,
2: ये हमला बड़ा।
0: सबसे बड़े बात है
2: हाँ
0: कि जदुनंदन भैया
2: हाँ
0: कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के प्राकृतिक खेती के किसान हैं,
2: हाँ
0: और एला चुने हन
2: सही बात
0: कि
2: है।
0: हमार बिलासपुर जिला के किसान के सब के प्रगति होए, ताकि हमारे जो जदुनंदन भैया जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छा नाम कमा रहे हैं।
2: बहुत अच्छा, आप मन के भी प्रयासरत है ये संबंध में, आपन फोन करे है एक बार, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: हेलो,
1: हाँ भैया मोर माया भरे राम राम।
2: राम राम। हाँ कौन बोला थे, कहाँ बोला थे जी?
1: मैं नवागढ़ कटरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
2: नारायण नारायण नारायण, कहना भुला
1: हाँ भैया, हाँ
2: करे
1: बिल्कुल, देख अभी कस के घाम पड़ा था भैया, है ना।
2: लोग। सही बात है,
1: अब भगवान ले याद करना बहुत जरूरी
2: बहुत
1: हवा है,
2: जरूरी
1: और
2: है। हाँ
1: संग हमार
2: बिल्कुल,
1: वैज्ञानिक मन घलो याद करना बहुत जरूरी है
2: हाँ
1: भैया।
2: तो सुरता करा ना, बतावा ना का बात है, का
1: हाँ
2: समस्या है?
1: तो डॉक्टर दीदी राम राम।
0: राम राम भैया।
1: हाँ दीदी, जैसे अभी हमन अब यदि रासायनिक ढंग ले खेती करत आवत हवन,
0: हाँ
1: लेकिन हमार जिंदगी में प्राकृतिक खेती का होते और ये बहुत जरूरी हवे हमार जिंदगी भर, तो एकर ले हमला का महत्व है, एकर का लाभ है, यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगाए हवा दीदी।
0: हाँ भैया, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, प्राकृतिक खेती क्या है।
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: सीधी
1: दीदी,
0: भाषा में समझे तो प्राकृतिक खेती मतलब प्रकृति से जुड़ना, जिसे हम
1: अच्छा
0: लोग
1: दीदी, हाँ
0: ऋषि खेती
1: हाँ
0: के नाम से भी जानते हैं, और
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: हमारे पूर्वज जो खेती करते थे वही खेती है, समझ लीजिए।
1: हाँ दीदी, हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: और प्राकृतिक खेती में अगर देखा जाए तो इसका लाभ, जैसे मैंने पहले बताया कि
1: हाँ हाँ
0: हमारे फसलों का अच्छा उत्पादन होगा, उत्पादकता
1: अच्छा
0: बढ़ेगी,
1: दीदी,
0: फसल
1: हाँ
0: उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा। जो लगातार हम
1: हाँ
0: धान की खेती कर रहे हैं और धान की खेती में लगातार रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसान भाई अगर बिलासपुर जिले की भी बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ की भी बात करें, तो किसान भाई ज्यादातर किसान धान के बाद धान ले रहे हैं, और ये हमारे खेत के लिए भी नुकसान है। हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा फसल परिवर्तन होगा, धान के बाद हम चना, गेहूं, सरसों, अलसी, तिल, ये सब लेंगे, उन्हारी फसल लेंगे, हम लोग दलहन फसल पूरा छोड़ दिए हैं। इससे हमारा जो जमीन की उपजाऊ शक्ति वो कम होते जा रही है।

0: उसको बनाने के लिए पहले हम लोग घुरुआ का खाद लेते थे, अब घुरुआ का खाद भी नहीं डालते हैं। तो ये सब करने के लिए मतलब प्राकृतिक खेती मतलब प्रकृति से जुड़ना, और एक देसी गाय से आप 30 एकड़ की प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। हमको इसमें खेत में कुछ भी बाहर से नहीं वो करना है, नई नई चीजें हो रही हैं। किसान भाई आपस मतलब खेत के पास जितनी चीजें हैं, खेत के पेड़ पौधे, खेत की मिट्टी, गाय का गौमूत्र, गोबर, इसी का प्रयोग करके हमको खेती करना है।
1: आप बड़ा ध्यान से सुनता, लेकिन अब बड़ा चतुरा
0: हाँ
1: किसान, सबसे बड़ी बात आप बड़ा चतुरा किसान है, और चतुरा किसान ला केकरा चाप थे चावे को घाव एक घाव चावे के लिए तेरे बतावा।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: तो खाद का जो हमारे पास परेशानी किसानों को होगा, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको गाय दूहना रहता है तो गाय घर में रहती है, बाकी समय बाहर रहती है, तो वो गाय का संरक्षण भी होगा हमारा। गाय के गौमूत्र से, गोबर से, इसी से हमारा जो प्राकृतिक खेती के जो हमारे तत्व हैं जो हम खेतों में डालेंगे वो बनेंगे।
1: अच्छा अच्छा
0: इसी का प्रयोग हम करेंगे, और हमको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षण प्रदान करने के लिए, और कह सकते हैं कि एक टिकाऊ खेती करने के लिए हमको प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है।
1: अच्छा, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत ला बता दे।
0: देखिए, प्राकृतिक खेती का सिद्धांत अगर हम पूर्णता देखें तो जो ऋषि मुनि खेती करते थे जंगल में, उसमें अगर सिद्धांत देखें तो जुताई भी नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: लेकिन आज की जो परिवेश है इसमें हमको सब कुछ मिला करके हमको इसको करना पड़ेगा। इसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना है, और खरपतवार नाशी के लिए भी जैसे जब हम फसल बदलते हैं तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसल से जुड़े रहते हैं, मतलब वो फसल आएगी तो वो खरपतवार भी आएगा, वो केचुआ भी हम किसानों को देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो प्राकृतिक खेती में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के परिवेश में जैसे देसी बीज जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं और कुछ तो शायद अब दिखेंगे भी नहीं, तो उन देसी बीजों का प्रयोग करना है। वो इसलिए क्योंकि जो प्राकृतिक खेती है, देखिएगा जो पुराने बीज होते हैं जो संरक्षित है वो हर परिस्थिति को झेल लेते हैं,
1: है ना, सही।
0: तो इसलिए हमको इसमें देसी बीज का प्रयोग करना है।
1: अच्छा, प्राकृतिक खेती के स्तंभ की बात करबो।
0: हाँ, तो प्राकृतिक खेती के जब हम स्तंभों की बात करेंगे, पहला होता है बीज, बीजामृत, जो हमारे बीज के उपचार करेगा, इससे कीट एवं रोगाणु से बचाव होगा। उसके बाद हमारा होता है जीवामृत, मतलब जीवामृत सूक्ष्म जीवों की जो हमारे यहाँ संख्या है,
1: अच्छा,
0: खेत की, उसको बढ़ाएगा, हमारे सूक्ष्म जीव की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाएगा।
1: अच्छा,
0: पोषक तत्व जो है उनको हमारे पौधों को उपलब्ध करवाएगा। उसके साथ साथ हमारा घन जीवामृत है, घन जीवामृत के बाद हमारा मतलब जो हमने जीवामृत बनाया है उसका अगर ठोस रूप देखेंगे तो
1: अच्छा,
0: वो घन जीवामृत है। फिर आच्छादन या मल्चिंग जो हम हमारे खेत को ढकते हैं, जो हमारी फसल होती है,
1: अच्छा,
0: खरपतवार नियंत्रण इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। अंतर्वर्ती या मिश्रित फसल, ये एक है, और उसके बाद आता है वाफसा।
1: अच्छा,
0: वाफसा मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए वास्प से हमारा पौधा बढ़ेगा।
1: अच्छा,
0: वास्प ग्रहण करके, और यही हमारा प्राकृतिक खेती का स्तंभ है।
1: अच्छा, स्तंभ के बाद बताया अपन, समझ गए हमें किसान भाई मन अपना थे गला आजकल। तो बात करबो प्राकृतिक खेती में लाभ के, तो प्राकृतिक खेती का लाभ का है थोकन?
0: देखिए, प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इससे हमारा स्वास्थ्य सही है। जो आज किसान और जो हमारे यहाँ
1: हाँ,
0: बीमारियां बढ़ रही
1: हाँ,
0: हैं वो हमारा कम होगा। सबसे पहला लाभ तो ये होगा, उत्पादन की जो लागत है
1: हाँ,
0: जैसे खेती में जो लागत बढ़ती जा रही है वो कम होगी।
1: अच्छा,
0: और रोजगार का सृजन होगा
1: हाँ,
0: इसके
1: हाँ,
0: साथ साथ, और पर्यावरण संरक्षण, जल की कम आवश्यकता
1: हाँ,
0: होगी
1: हाँ,
0: पानी कम लगेगा
1: हाँ,
0: पानी हमारे खेत के जल धारण क्षमता बढ़ेगी।
1: अच्छा, कोनो को फोन आवत है तो रुक गो, कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
3: अरे मैं सिंगारवाड़ी घुटकुले भगत राम पटेल बोला था, हमको भैया राम राम, आज के पहुना घलो करा राम राम जाते,
0: राम राम भैया।
1: आप मन के ये कार्यक्रम में स्वागत हवे भगत राम पटेल जी।
3: हमन चाहत रहे कि आज जिन हमारे खेती की जिन पद्धति है पुराना जमाना करते चला था, लेकिन हमन चाहत रहे कि अब जिन प्राकृतिक जिन खेती है ओका हमन थोड़ा बढ़ावा देते नहीं से कही के, तो एक बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहत रहे कि खेती कैसे अपनाई जेकर से अच्छा खेती कर सके।
0: प्राकृतिक खेती के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने गाय का संरक्षण

0: प्रदर्शन करें, क्योंकि एक देसी गाय से आप 30 एकड़ की प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। और प्राकृतिक खेती मतलब हमारी ऋषि खेती, जो ऋषि मुनि के समय से करते आ रहे हैं। अभी जो आने वाले समय में हमको खाद की समस्या होगी, तो उस समय हम लोग जीवामृत का प्रयोग करें, घन जीवामृत का प्रयोग करें। इससे ये होगा कि हमारे जो खेत में सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संख्या भी बढ़ेगी, गतिविधि भी बढ़ेगी, और साथ में जो हमारे पोषक तत्व जो खेत में हैं, उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। मतलब हमारे खेत में जो ऑलरेडी पोषक तत्व हैं, वो हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। और प्राकृतिक खेती के लिए किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अपने गायों का संरक्षण करें। गाय संरक्षित करेंगे तो आपको गौमूत्र मिलेगा। गौमूत्र और गोबर से आप बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, वो उसका आप उपयोग कर पाएंगे।
1: हाँ, तो भगत राम पटेल जी, प्राकृतिक खेती लिए आप जुड़े हो और बताए हैं, विषय करत रही है। आप मन फोन करे कर बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राकृतिक खेती के हम बात करते छन, तो पौध संरक्षण कैसे ढंग ले करे जा सकत हुए?
0: देखिए, पौध संरक्षण का जो हमारा महत्व है कीड़े बीमारी से, उसके लिए हम लोग नीमास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। नीमास्त्र जो है, नीमास्त्र बनाने से जो हमारी इल्ली है और जो हमारे कीट हैं, अच्छा, उसका नियंत्रण होगा। और जैसे ब्रह्मास्त्र का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे तना छेदक, फली में होने वाले इल्ली, अच्छा, और सुंडी वगैरह जो हमारे यहाँ खेत में होती है, उसका ये उपाय कर देगा।
1: अच्छा,
0: अब जो नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं, ये नाम से ही समझ में आता है। नीमास्त्र मतलब नीम से बना। हमको नीम की पत्तियां लेनी है, और 5 किलो कूटी हुई नीम की पत्ती ले लेंगे, उसको 100 लीटर पानी में मिला के रख देंगे। फिर उसके बाद उसमें 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गाय का गोबर उसमें डालकर एक दिन में 2 से 3 बार घुमाना है उसको।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: मतलब जो हमारा 200 लीटर का हम ड्रम लेंगे, उसमें घुमाना है, और 48 घंटे बाद,
1: अच्छा,
0: हम
1: अच्छा,
0: उसका प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। 100 लीटर प्रति एकड़ की दर करेंगे तो हमारे यहाँ जो कीड़े हैं, कीट हैं, इल्ली हैं, इनसे हमको बचाव मिलेगा। इसी उसमें हम तना छेदक और बाकी लोग, इसके लिए हम ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक हम दवा बनाते हैं दशपर्णी।
1: अच्छा अच्छा।
0: दशपर्णी मतलब समझ लीजिए 10।
1: हाँ,
0: 10 ऐसी पत्तियां। किसान भाई, हमारे खेतों के पास ऐसी पत्तियां हैं ऑलरेडी, जिनको हमको प्रयोग करना है, जिनको गाय नहीं खाती। गाय नहीं खाती तो उसमें धतूरा है, कनेर है, नीम है, ये सब पत्तियां मिला के किसान भाई अपनी सुविधा के हिसाब से जो पत्ती उनको मिल रही है, जैसे मैंने बोल दिया 10 पत्ती, अगर 10 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, करंज की पत्ती भी ले सकते हैं उसमें, जो ऐसी कड़वी पत्ती, सीताफल ले सकते हैं, धतूरा ले सकते हैं, ये पत्तियां जो गाय नहीं खाती, वो पत्तियों के प्रयोग से आप दवाई कीटनाशक अपने लिए घर में बना सकते हैं और इसका प्रयोग खेती में कर सकते हैं। भिन्न चीजें हैं। जैविक खेती में हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, गाय के गोबर को आदि को हम लोग एक साथ एक बार में डाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब इस तरह से हम जैविक खेती में करते हैं, बाहर की वस्तु लाके हम खेत में डालते हैं।
1: अच्छा।
0: जैविक और प्राकृतिक खेती में हमको खेत की चीज ही गौमूत्र से बनाना है, गोबर से बनाना है, और हमको जो पौधे का सूक्ष्म पर्यावरण है, मतलब पौधे के, उसको हमको मतलब अच्छा करना है।
1: अच्छा।
0: प्राकृतिक खेती में हम लोग उसको अच्छा करते हैं। दूसरी बात, अगर जैविक खेती की देखी जाए तो अगर पूर्णतः हम जैविक खेती में जुताई करते हैं, हम खाद का मिश्रण डालते हैं उसमें, और उसमें निंदाई गुड़ाई भी करते हैं। प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में निंदाई गुड़ाई का काम हमारा खेत का किसान करेगा, मतलब हमारा सबसे महत्वपूर्ण किसान जो हमारा हलधर है। हमारा हलधर कौन है? हमारा हलधर केचुआ है। वो उस खेत में निंदाई उड़ाई का काम
1: करेगा। काम करेगा।
0: खेती का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मिट्टी को पलटने का, ऊपर नीचे करने का, वो हमारा केचुआ करेगा।
1: अच्छा, अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: ऐसे ही अगर देखा जाए तो अब बाकी बाहर की चीजें जैविक खेती में हम डालते हैं, और प्राकृतिक खेती में गौमूत्र से चीजें बनी हुई डालते हैं, मिट्टी को पलटा जाता है, और मिट्टी को मतलब बोलना चाहिए कि उर्वरक शक्ति को उसको हमको बनाना है।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा।
0: आपस आसपास का ही
1: बहुत अच्छा विषय रही सब आज के प्राकृतिक खेती के महत्व। ये विषय में जन भी फोन आई तेकर समाधान करे है। आज हमारे स्टूडियो में आए कर डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद भैया।
1: आज के रिकॉर्डिंग में सहयोग दें माइकल एक्का जी मन ई संग फोनिंग कार्यक्रम ले दविदा महंगू भैया के राम राम जय जो
2: संगवारी हुआ सुनत रहें फोन इन कार्यक्रम। अब आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय रही से प्राकृतिक खेती का महत्व। ये विषय के विशेषज्ञ रही है डॉक्टर शिल्पा कौशिक जोन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से रही है और सफल संचालन हमर महंगू भैया करत रही है कार्यक्रम के। अब भाई कार्यक्रम माँ आगू कति बढ़े के बेरा हो गए है काबर के हमर संगवारी मल्ला अगोरा रथे सुघर गीत के भी आज तो जंगल के बाद चलत है आवाज सुनी ये सुघर गीत ला जिला स्वर दे है दीमन सेन और खर संगवारी मन।

सादा धान की कीमत 2170 अब 2220, बासमती 17-18 के कीमत रही से 3100 और अधिकतम मूल्य 3850। गेहूं की बात करबो तो 2400 और अधिकतम मूल्य 2550 रुपए कुंटल, सरबती गेहूं 2900 से 2920 रुपए कुंटल। साग भाजी में आलू की कीमत हवा 1000 से लेकर 2900 तक की कीमत है, पताल 2300 से 2400 रुपए कुंटल अधिकतम, लौकी हवा 720 और अधिकतम 1100 रुपए कुंटल, भाटा हवा 820 और 1000 रुपए कुंटल अधिकतम, पत्ता गोभी 620 रुपया और अधिकतम 800 रुपया, मूली 520 और 900 रुपए कुंटल। चना देसी पीला के बात करबो तो 3500 रुपए कुंटल और अधिकतम 3600 रुपए कुंटल है। संगी हुआ गर्मी है बहुत पड़ा थे तो हमार किसान भाई मन बार थोड़ा समसामयिक सलाह ये है कि बिहनिया जल्दी और सांझ के सिंचाई करा ताकि पानी के वाष्पीकरण कम हुआ। जौन किसान भाई मन खेती किसानी के अभी लगाए हुई उमन सिंचाई हमेशा ड्रिप और स्प्रिंकल विधि से अपनावा, इमा का होते पानी के बचत होते और खेत में नमी बनाए रखे बर मल्चिंग जो फसल के अवशेष रहते वाला प्लास्टिक से कवर करके रख देवा, और तेज गर्मी में साग भाजी और दलहनी फसल हर नुकसान ज्यादा होते, भाजी के पान मन जल जाते ता एकर बर का करना चाहिए छाया जाल जोन रहते ओकर उपयोग करा, लू अतका चला थे है ना तापमान बढ़े तेकर बर त फसल में सूखापन जैसे दिखाए तो हल्का हल्का सिंचाई कर देवा, कीड़ा और रोग व्याधि के नियमित निगरानी करा, कावर के सफेद मक्खी थ्रिप्स ये जो बीमारी है वह गर्मी में बहुत तेजी से बढ़ते, और खेत में जैविक खाद गोबर खाद के उपयोग ला बढ़ावा, अधिकतर एकरे उपयोग करा, यूरिया ये सब के प्रयोग कम करा और यदि करा था तो सिंचाई के साथ करा ताकि पौधा मन झटका मत लगाए। खरीफ फसल के तैयारी जन धान मक्का सोयाबीन ये सब फसल लगवैया मन बीज और खातों के पहले से व्यवस्था कर लेवा, प्रमाणित उन्नत किस्म के बीज के उपयोग करा और खेत ला गर्मी में ही उलट पलट के गहरा जोताई कर देवा ताकि हमारे जो कीट कीड़ा मकोड़ा है शत्रु कीट जला कथन और खरपतवार वहा नष्ट हो जाए। पशुपालन करैया संगवारी मन हरा चारा खवावा और उस पानी ला दो बार तीन बार ठंडा पानी पियावा, हवादार छायादार जगह में अपन पशु मला रखा और टीकाकरण जरूर करवावा समय रहते। घर में अभी गर्मी बहुत चला थे और पशु के साथ साथ मन के मल्ला भी चेत करना है, अच्छा से रहना है और छायादार जगह में रहा और सब कोई स्वस्थ रहा मस्त रहा यही हमन के शुभकामना। और मौसम के बात करबो तो आज अधिकतम देखा 44 डिग्री सेल्सियस से बिलासपुर के तापमान और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस देखा भाई। कार्यक्रम करत करत गोट बात मीठ मीठ करत करत बेरा हर चुट ले बुलक जाते, अब कार्यक्रम ले विदा लेहे के बेरा हो गए। तो आज के कार्यक्रम कैसे लगे चिट्ठी पत्री में जरूर बताओ, अगर आ रही आपके चिट्ठी पत्री के झोंको अपन कजरी दीदी के। मैं प्रीत भरे राम राम जय जोहार।

कार्यक्रम ग्राम सभा भी हम प्रसारित कर रहे थे रात्रि के 8 बजे हैं। सुनते हैं संजय वत्सल के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गैर फिल्मी नगमा जिसे लिखा है रोहित कुमार ने, स्वर और संगीत संजय वत्सल का।

संजय वत्सल के स्वर और संगीत से सजा ये गैर फिल्मी नगमा अभी आपने सुना। इस गीत को लिखा था रोहित कुमार ने। और अब लीजिए सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र नाथ ने, स्वर और संगीत संजय वत्सल का।

0: राजेंद्रनाथ का लिखा गैर फिल्मी नगमा अभी आपने सुना, संजय वत्सल की आवाज़ में, और इसे संगीत से संवारा था संजय वत्सल ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम सुगम संगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत जगत में अपने गानों की धुनों की और उसकी मधुरता के दम पे लोगों के दिलों में राज करने वाले

चर्चित संगीतकार राम लक्ष्मण की आज पुण्यतिथि है। उनकी बनाई गई धुन आज भी पीढ़ियों और समय की सीमाओं को पार करता उनका संगीत आकर्षक धुनों के लिए जिम्मेदार संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण एक ऐसी संगीतमय प्रतिभा जिन्होंने बॉलीवुड पर अपनी एक अपूर्णी छाप छोड़ी। 16 सितंबर साल 1942 को जन्मे विजय पाटिल उर्फ राम लक्ष्मण। अब सवाल ये कि भला एक ही आदमी के दो नाम क्यों हैं? इस पर भी हम गौर फरमाएंगे इस गीत के बाद।

प्रतिष्ठा अमर विजय संचालक के रूप में हुई थी और इन दोनों का पूरा नाम विजय काशीनाथ पाटिल और सुरेंद्र श्रीराम हिंदरे था। सुरेंद्र बांसुरी बढ़िया बजाते थे और विजय अकार्डियन। इस डुओ के राम थे सुरेंद्र और विजय थे लक्ष्मण। इनका ऑर्केस्ट्रा इतना मशहूर था कि मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अभिनेता दादा कोंडके ने अपने फिल्म पांडु हवलदार में संगीत के लिए इनको आमंत्रित किया। इसके बाद राम लक्ष्मण का संगीत मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की ओर आया। साल 1977 की फिल्म एजेंट विनोद बनी उनकी पहली फिल्म और इस दौरान राम यानी सुरेंद्र का अचानक निधन हो गया, लेकिन साथ ही विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने दोस्ती निभाई और अंत तक सुरेंद्र यानी राम का नाम अपने नाम लक्ष्मण से पहले रखकर राम लक्ष्मण के नाम से संगीत देते रहे और राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को हिंदी फिल्म जगत में जीवित रखा।

श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में हालांकि राम लक्ष्मण की जोड़ी की शुरुआत एजेंट विनोद फिल्म के संगीतकार के रूप में हुई थी, पर इनके आरंभिक लोकप्रियता का बड़ा श्रेय हमसे बढ़कर कौन इस फिल्म के एक गीत देवा हो देवा को जाता है। और ये गीत आज तक गणपति उत्सव का सिग्नेचर गीत बना हुआ है। कंपोजिशन का एक दौर चलता रहा, लेकिन राम लक्ष्मण का संगीत राष्ट्रीय प्रोडक्शन का साथ पाकर तब के हर उम्र के दर्शकों और हरेक चार्ट बस्टर में टॉप पर रहा। और ये 90 का उभार भी था और एक नए सुपरस्टार सलमान खान का उदय होने वाला था। फिल्म थी मैंने प्यार किया और यहीं से एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज सलमान खान के लिए फिक्स हो गई थी। फिल्म के गीतों ने दोस्ती और प्यार की ऐसी सांगीतिक परिभाषा गढ़ी कि देखते ही देखते इस फिल्म के ऑडियो टेप की बिक्री ने 1 करोड़ से ऊपर का भी जादुई आंकड़ा छू लिया था। और इसके जबरदस्त संगीत ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था।

श्रोताओं, मैंने प्यार किया इस फिल्म के लिए संगीतकार राम लक्ष्मण की जोड़ी को मिला फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक अवार्ड। राजश्री प्रोडक्शन वालों का भरोसा राम लक्ष्मण के संगीत पर टिक गया था। और फिर साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन, भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती यह फिल्म। और ये फिल्म, इस फिल्म ने राम लक्ष्मण के संगीत को वहां पहुंचा दिया जिस पर साथी संगीतकारों लोगों को रक्स होना स्वाभाविक था। इस फिल्म के गानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि चित्रहार के दो एपिसोड भी कम पड़ जाए। दीदी तेरा देवर, माई नी माई, वाह वाह राम जी, और घरों के हल्के फुलके मजाक करने वाले रिश्तों का खास गीत भी बन गया इस फिल्म का हर एक गीत। वहीं पहला पहला प्यार है, मुझसे जुदा होकर जैसे गीत प्रेमी जोड़ों के प्रेम की वो पंक्तियां बनी जिनका मुकाबला केवल सालों पुरानी आशिकी फिल्म के गीत ही कर सकते थे। और दीवानगी का आलम तो ये था श्रोताओं कि पारिवारिक ताने बाने में लिपटे इन गीतों ने लोगों को सपने दिखाने शुरू किए। इस फिल्म के गीत संगीत की पॉपुलैरिटी को कोई भुला नहीं सकता, इसकी पॉपुलैरिटी का कोई जवाब आज भी नहीं है। और इस फिल्म के गीतों में भारतीय पारिवारिक संस्कृति, शादी ब्याह की परंपराएं और उत्सव का रंग हमें साफ दिखाई देता है। श्रोताओं, राम लक्ष्मण की सबसे बड़ी खासियत थी उनका संगीत। केवल उनका संगीत सुनाई नहीं देता था बल्कि दृश्य और भावनाओं के साथ जुड़ जाता था हमारे दिलों में।

श्रोताओं, राम लक्ष्मण अब महानगर और छोटे शहरों में तो छोड़िए, कस्बों और गांवों में नाम से जाने लगे थे। और इसमें कोई शंका नहीं कि राजश्री की सफलता में राम लक्ष्मण के संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी प्रोडक्शन की हम साथ साथ हैं फिल्म ने वही जादू फिर से दोहरा दिया। उनके संगीत और गीतों का असर ऐसा कि जैसे ही गीत बजते सुनने वालों की नसों में नशे की मानिंद गीत उतरने लगते। राम लक्ष्मण के कंपोजिशन की कमाल ये थी कि वो गानों के बीच में अपनी पिछली फिल्मों के धुनों को बतौर फिलर डाल दिया करते, और ये काम इतनी बारीकी से होता कि दर्शक जानते हुए भी उसके रंग में रंगा रहता। जैसे मैंने प्यार किया कि कोई सिग्नेचर ट्यून हम आपके हैं कौन में, और उन दोनों का समन्वित हम साथ साथ हैं फिल्म में, और ये प्रयोग सफल रहा और हिट रहा। श्रोताओं, राम लक्ष्मण के कुछ बेहद लोकप्रिय गीत संगीत इन फिल्मों में भी नजर आए। उस्तादों के उस्ताद तराना, 100 डेज, मुस्कुराहट, सातवा आसमान, पत्थर के फूल, पुलिस पब्लिक, अनमोल जैसे सैकड़ों फिल्मों के गीत हैं जो हिंदी फिल्म संगीत की यात्राओं, जीवन के अच्छे बुरे समय में हम सब के साथ ही बने रहेंगे। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी और भोजपुरी में 150 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, और मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली और सूरज बड़जात्या जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों के साथ काम भी किया। और अब आपको सुनाते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, राम लक्ष्मण का संगीत भारतीय परिवारों की यादों का हिस्सा बन चुका है। शादी ब्याह, पारिवारिक समारोह और रेडियो कार्यक्रमों में आज भी उनके गीत पूरे उत्साह से सुने जाते हैं। 22 मई साल 2021 में विजय पाटिल यानी राम लक्ष्मण की जोड़ी में से लक्ष्मण का निधन हो गया, लेकिन उनकी धुनें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में, श्रोताओं के दिलों में जीवित हैं। तो श्रोताओं, ये था मधुर धुनों के जादूगर राम लक्ष्मण के संगीत सफर पर आधारित चर्चा। राम लक्ष्मण बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, हम एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, और उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भारतीय भावनाओं, रिश्तों और संस्कृति का मधुर संगीत है। और अब इन्हीं बातों और गीतों के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन

0: सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल

0: अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश

मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद

0: दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश, फिल्म का नाम है संगम, रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बाहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घिउंजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया, भूले बिसरे सारे किस्से आंखों में घोल गया। अब जागते गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। भीगा हुआ सिरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आंखों से है बहाना।

न होश खुद का न कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। फैली कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे, भटकूं मैं खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां, मेरा सबर है।

वो गम दिल से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सक पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत ही कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दें भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत से खाए बैठे हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। खिलता है चांद रोज, मुस्कुराते हैं तारे, हम इनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे। ना आना था जिंदगी में तो तसव्वुर में क्यों हो आते, कह तो गए थे अब तुम कोई नहीं हमारे। ये बातें तुम्हारी, वो यादें तुम्हारी, करते हैं लाख कोशिश बिसरी नहीं बिसारे, पर तुम हो ही नहीं हमारे।

गम का दिया जला तो जल उठी ये रात, कोई तो पूछे मुझसे मेरे दिल के अब हालात। दिन पत्थर से सख्त लगते, डसे काली नागिन सी ये रात, अब शब्दों में क्या समेटूं मेरे बिखरे हुए जज्बात। आज करो एक वादा मेरे सामने तुम, दिया है गम हमें कोई बात नहीं, पर फिर ना करना ऐसा किसी के साथ।

ये गम किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं, न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी नहीं। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं, क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे। तू मेरा दोस्त भी नहीं, हम नवा भी नहीं, मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

0: जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi today. He said that work is in progress towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce